नमस्कार, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30 तारीख, तदनुसार 20 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 41 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे स्टेशन अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व

0: के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वंदन वार विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

presentan. संस्कृत का एक श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात जो आलस करते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती, जिनके पास विद्या नहीं होती वो धन नहीं कमा सकते, जो निर्धन हैं उनके मित्र नहीं होते और मित्र के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये था चिंतन, अब भक्ति संगीत।

0: अभिनंदनवार कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

आइए अब झरोखा में आपको बता दें कि आज कौन कौन से कार्यक्रम आप 107.2 मेगाहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। सुबह 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता। 7 बजे का समय रहेगा भूले बिस्तरे गीत कार्यक्रम का। हम है राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 7:30 पर। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 का समय रहेगा त्रिवेणी का। पर चित्रलोक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 9:30 का समय रहेगा आज का अखबार का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 10:05 पर आप सुन सकते हैं सफर सुरीला सा। पर आप सुन सकते हैं पॉप टाइम कार्यक्रम। 11 बजे का समय रहेगा आपकी फरमाइश गीत को चलाने का और आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। कार्यक्रम रहेगा 11 बजे म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस।

दोपहर 12 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यादों की महफिल कार्यक्रम का समय रहेगा 12:05 का। दोपहर 1 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम में विवरण। 1:05 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक हिंदी समाचार। 1:10 का समय रहेगा प्रादेशिक पंजाबी समाचार का। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं 1:15 पर। 1:30 पर आप सुन सकते हैं सुरीला सफर और 2 बजे का समय रहेगा त्रिवेणी कार्यक्रम का। दोपहर 2:15 पर आप सुन सकते हैं हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 2:30 का समय रहेगा सदाबहार नगमे का। मन चाहे गीत पेश किए जाएंगे दोपहर 3 बजे। 3:30 पर आप सुन सकते हैं नाट्य तरंग। शाम 4 बजे आज पिटारा में बॉम्बे टॉकीज पेश किया जाएगा। 5:05 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। 5:20 का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का। और 5:30 पर आप सुन सकते हैं सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।

0: शाम 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 6:05 का समय रहेगा गैर फिल्मी संगीत का। 6:10 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक हिंदी समाचार और 6:20 का समय रहेगा प्रादेशिक पंजाबी समाचार का। शाम 6:30 पर पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। 7 का समय रहेगा विशेष जयमाला कार्यक्रम का। 7:45 पर प्रादेशिक मुख्य समाचार पेश किए जाएंगे। 7:47 का समय रहेगा पंजाबी गीत का। 8 कार्यक्रम हवा महल पेश किया जाएगा। 8:15 पर आप सुन सकते हैं चित्रलोक। 8:45 पर समाचार संध्या। 9 आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 का समय रहेगा आज के फनकार कार्यक्रम का। रात 10 आप सुन सकते हैं छाया गीत कार्यक्रम। 10:30 पर प्रादेशिक मुख्य समाचार पेश किए जाएंगे और 10:32 का समय रहेगा सुर सांझ कार्यक्रम का। तो श्रोताओं, ये तो है वो तमाम कार्यक्रम जो आज आप एफएम चंडीगढ़ पर सुन सकते हैं। तो आइए आप सुनते हैं रामचरितमानस विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनिए रामचरितमानस का आज भाग 225।

तथा कुलगुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या तथा जनकपुर से आए सभी लोग चित्रकूट में 4 दिनों से निवास कर रहे हैं। श्री राम को देख सभी नरनारी अत्यंत हुलसित हैं। सबकी यही इच्छा है कि वे श्री राम को साथ लिए बिना वापस न लौटें। उन्हीं वन में छोड़कर जिन्हें घर नगर में रहना अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए कि विधाता उनके विपरीत हो गया है। यदि देव अनुकूल हो तभी राम के निकट वन में निवास करने का सौभाग्य मिल सकता है। एक दिन माताओं के पास समय देख राजा जनक का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर सहित उनका सत्कार किया, उन्हें उचित सम्मान से आसन दिए। दोनों टोलियों के व्यक्ति पुलकित किंतु शिथिल हैं, उनकी आंखों में हैं प्रेम और शोक के आंसू।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का पुनश्च स्वागत है और स्वागत है जाने माने संगीतज्ञ वॉयलिन वादक पंडित एस एल कंडारा जी का। पंडित जी, वॉयलिन का विहंगम संसार ये शीर्षक भी आप ही का दिया हुआ है
2: जी।
1: वॉयलिन की व्यापकता की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि फिल्म संगीत में कितना अधिक इसका इस्तेमाल हुआ है।
2: बिल्कुल जयंत जी, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। और इस बाजे की व्यापकता को आप देखिए कि पाश्चात्य संगीत में गज के बाजों में इसकी प्रमुखता सिद्ध हुई
1: जी।
2: और बड़े बड़े कंपोजर्स ने इस पे काम किया और बहुत अच्छा काम हुआ। और उनको देख के हिंदुस्तान में भी ये बाजा जब आया
1: जी,
2: तो हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे क्लासिकल और वेस्टर्न भी, जुबिन मेहता का मैं नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने भी इस बाजे का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया अपनी सिम्फनी में। और फिल्म म्यूजिक की बात करें आप तो फिल्मों में तो इसका लाजवाब इस्तेमाल हुआ है। एक जमाना था 50-50 वायलिन इस्तेमाल होते थे फिल्म स्टूडियोज में, और उस जमाने में इतने अच्छे अच्छे इस पे पीसेस बने, इतना अच्छा अच्छा काम हुआ कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। श्रोताओं को आप एक पीस जरूर सुनाएं लेकिन फिल्म का, जो कि हृदयनाथ मंगेशकर जी ने कंपोज किया हुआ है
1: जी, आशा जी की आवाज में होगा।
2: एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से झूठे नैना बोले सांची बतिया
1: जी जी, ये वो गीत है। और इस गीत में जो ग्रुप वायलिन बजा है
2: जी,
1: आप उस झलक की बात,
2: उसकी बात कर रहे हैं।
1: तो उस गीत की ये झलक जहाँ खास तौर से ग्रुप वायलिन बजाया गया है, पहले अपने श्रोताओं को सुनाते हैं फिर

0: क्या बात है, मजा आ गया पंडित जी। लग रहा था कि बस इसे सुनते ही चले जाएं, मगर इसकी विशेषता के बारे में आप बताइए।
1: इस गाने में, इस गीत में जिस तरह से हृदयनाथ मंगेशकर जी ने वायलिन का इस्तेमाल किया
0: जी,
1: मेरे ख्याल से 25-30 वायलिन जरूर होंगे, क्योंकि मैं तो जब गाना रिकॉर्ड हुआ तब उपस्थित नहीं था, तो उसका अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कितने सारे वायलिन उसमें बजे हैं और किस दक्षता के साथ वो ऑर्केस्ट्राइजेशन हुआ है।
0: जी हाँ जी,
1: फिल्म में अच्छे अच्छे काम हुए हैं इस बाजे के साथ। और ये वहां से अगर शुरू करें आप, रोशन साहब के जमाने से, मदन मोहन जी के जमाने से या नौशाद साहब के जमाने से, तो एक से एक गीतों में इस वाद्य की उपस्थिति आपको प्रभावित करेगी। और बहुत अच्छे अच्छे पीसेज हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बनाए हैं
0: जी
1: इस वाद्य को लेकर। एक गीत मुझे याद आता है, वैसे तो कई सारे गीत हैं जिनका जिक्र करना संभव नहीं यहाँ पे, लेकिन नौशाद साहब का एक गीत आप बजा सकते हैं जिसमें बहुत संजीदा किस्म के पीस उन्होंने इस्तेमाल किए हैं
0: जी।
1: कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई,
0: वाह,
1: लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई।
0: बहुत ही खूबसूरत गाना है
1: जी,
0: आइए सुनते हैं।

0: जी, ये तो हुई ग्रुप वायलिन की बात, जब समूह में वायलिन बजता है। सोलो वायलिन का भी बड़े खूबसूरत ढंग से इस्तेमाल हुआ है फिल्म संगीत में, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
1: देखिए, सोलो वायलिन को लेके भी इसमें अच्छे अच्छे पीसेस लगाए हैं लोगों ने, और प्यारे लाल जी, लक्ष्मीकांत जी
0: जी
1: जो पुराने संगीत निर्देशकों में रहे, प्यारे लाल जी का तो स्कूल ही था, फिल्म म्यूजिक सिखाते थे वो, मतलब फिल्म वाले लोग सब उनके शागिर्द थे वायलिन को लेके। और प्यारे लाल जी के पिताजी, शायद उनका नाम राम प्रसाद जी था, वो बहुत प्रचलित थे पूरे बंबई में गुरु के रूप में सिखाने में। और प्यारे लाल जी खुद अच्छा वायलिन बजाते थे, तो उनके हिसाब से कुछ उनमें उन्होंने कुछ पीसेस दिए। जैसे एक शायद मुझे याद आ रहा, शोर फिल्म, अगर आपको याद आ रहा हो।
0: मनोज कुमार निर्देशित।
1: जी,
0: और इसमें जो गीत है, एक प्यार का नगमा है।
1: एग्जैक्टली,
0: इसमें बहुत ही सुंदर वायलिन का पीस बजाया है प्यारे लाल साहब ने।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों नहीं ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाए।
1: बिल्कुल, श्रोताओं को सुनवाइए।

0: कमजोर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पंडित जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का उल्लेख हो रहा है आने वाली अगली कड़ी में। प्यारेलाल साहब ने जहां जहां अपना वायलिन वादन जिन गीतों में इस्तेमाल किया है उसका हम विस्तार से जिक्र करेंगे, उसकी बात को आगे बढ़ाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: आज की ये कड़ी यही समाप्त हो रही है। श्रोताओं, हमें

0: आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: बिल्कुल, नमस्कार।
2: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीष।

0: की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनेंगे भूली बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: को वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
6: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: आइए सुने बोले बिसरे गीत। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। लता मंगेशकर के एक बेमिसाल गाने के साथ कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं। जिद्दी फिल्म का ये गाना, एक बहुत ही ऐतिहासिक फिल्म जिसके जरिए कई कलाकारों की शुरुआती यात्रा थी, और प्रेम धवन की बोलते खेमचंद प्रकाश की तर्ज इस गाने में। साल 1948 ये फिल्म बनाई थी शाहिद लतीफ।

जा रही जा रही। ये गीत आपने सुना, देवानंद और कामिनी कौशल जिद्दी फिल्म के सितारे थे और खेमचंद प्रकाश का संगीत था। इस फिल्म के बारे में ये जो कहा कि ये फिल्म कई सितारों के करियर की शुरुआती फिल्म थी। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, ये किशोर कुमार का गाना था जो उनका शुरुआती प्लेबैक था। अब इत्तेफाक की बात यह है कि अगला गाना है मुकेश का और वो उनका शुरुआती प्लेबैक है।

0: डॉक्टर सफदर आहा का लिखा हुआ ये गीत था। अनिल विश्वास की तर्ज थी 1945 की फिल्म मुकेश की आवाज। जैसे कि मैंने कहा कि ये पार्श्व गायक मुकेश का पहला प्लेबैक था। दरअसल मुकेश का जो पहला गाना है वो ये नहीं है। फिल्म निर्दोष में 1941 में उन्होंने गाना गाया था, दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या, लेकिन ये प्लेबैक नहीं था क्योंकि ये गाना उन पर ही फिल्माया गया था। इस फिल्म के हीरो भी वही थे। दरअसल मुकेश और तलत महमूद ऐसे दो प्लेबैक सिंगर रहे हैं जिन्हें एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक रहा है और उन्होंने कुछ फिल्में भी की। यहां किशोर कुमार का नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो तो बाकायदा एक्टर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट क्या नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए साल 1950 पर। चितलकर और साथी, गीत पी एल संतोषी का, संगीत सी रामचंद्र का।
1: ए, मैं हूँ एक खलासी, मैं हूँ एक खलासी, मेरा नाम है भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी। मैं हूँ एक खलासी, अरे मैं हूँ एक खलासी, मेरा नाम है भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी। मैं जर्मन ना जापानी, अफगानी ना ईरानी, ना तुर्क बलूचिस्तानी, ना गोरा इंग्लिशानी। मैं जर्मन ना जापानी, अफगानी ना ईरानी, ना तुर्क बलूचिस्तानी, ना गोरा इंग्लिशानी। मैं प्रेम नगर का बासी, मैं प्रेम नगर का बासी, मेरा नाम है भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी।

0: और पेठों की पेठानी, मैं आप बताऊं खिचड़ी और आप भरूं मैं पानी, तो राजा की है रानी और सेठों की सेठानी, मैं आप बताऊं खिचड़ी और आप भरूं मैं पानी, कोई दाता ना कोई दासी, कोई दाता ना कोई दासी, मेरा नाम है भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी,
1: मैं भूले पलासी, मैं भूले पलासी, मेरा नाम है भीम पलासी।

0: इज्जत का मैं दीवाना और हुसन का मैं परवाना, मैं अपने से अनजाना और दुनिया से बेगाना। हर इज्जत का मैं दीवाना और हुसन का मैं परवाना, मैं अपने से अनजाना और दुनिया से बेगाना। ना साधु ना सन्यासी, ना साधु ना सन्यासी, मेरा नाम है भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी।
1: मैं हूँ एक खलासी, मैं हूँ एक खलासी, मेरा नाम है भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी।

0: 1950 में आई फिल्म सरगम का ये गाना था। चितलकर और साथियों की आवाजें थी। पीएल संतोषी के बोल थे। पीएल संतोषी यानी प्यारे लाल संतोषी आज के जमाने के जाने वाले लेखक निर्देशक राजकुमार संतोषी के पिता और संगीत खुद सी रामचंद्र का था।
1: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बाशु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हम वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।
2: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
3: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
2: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
3: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
2: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
3: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: तेंदु जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
4: मेरे बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है श्वास से रिलेटेड, श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है। मैटिनी शो 20 जून सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से आप भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुन रही हैं और 1950 में आई एक फिल्म का गाना हमने ब्रेक के पहले आपको सुनवाया था। अभी हम 1950 में ही रहेंगे। फिल्म बाबुल का गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं। एस यू सनी की यह फिल्म नौशाद के संगीत के लिए जानी जाती है। शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में ये गाना शकील बदायूनी के बोल। दिलीप कुमार और नरगिस थे इस फिल्म में।

आनंद और सुरैया ने एक साथ कई फिल्में की, उनमें से एक थी ये यादगार फिल्म। और अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और अमीर भाई कर्नाटकी की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, संगीत सी रामचंद्र का है, फिल्म का नाम समाधि। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, और ये गाना

0: चाचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मल क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सामने और उज्जवल बनाए। वीको टर्मल क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
2: काफी होता है। मैटिनी शो 20 जून सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारत।

0: सावन फिल्म के एक गाने का ये उदास संस्करण है जो बहुत ज्यादा सुनाई नहीं देता। लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत हंसराज बहल का था और ये था आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। तो रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी, इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

संगीतकार रवि के सरबती के दो गीत आपने सुने। ये डोली फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में था। इससे पहले आदमी और इंसान फिल्म का गाना था, वो आशा भोसले की आवाज में था। हमारे यही पैर के कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: 21 जून को है विश्व योग दिवस, और इस बार की थीम है बढ़ती उम्र के साथ योग। विविध भारती लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम। हमारे खास मेहमान हैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
3: मेरे बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है सांस से रिलेटेड, सांस के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
2: काफी होता है।
3: काफी होता है।
2: मैटिनी शो 20 जून सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

सुबुल्ले फूल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना।

खूबसूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। खूबसूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना है दिल आज है कोई

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम है राही प्यार के विविध भारती के मुंबई केंद्र से FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। देश और दुनिया का ताजा हाल जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं।

चार दिन योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
2: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जहरा और हो जहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफी नहार, आकाशवाणी कोलकाता।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से

0: उग्रवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों की सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाह का, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं

0: का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए सुनते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
2: आइए सुने त्रिवेणी।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिलेंगी विवाह पर। एक बिटिया घर में जन्म लेती है और धीरे धीरे बड़ी होती है। माता पिता का दिल हर मोड़ पर उसकी बलाए लेता है। छोटे छोटे हाथों से रोटी बनाती बिटिया, गुड़ियाओं से खेलती बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बचपन की पायल की वो छुन छुन धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और बिटिया के विवाह का समय आ जाता है। जिन गालों में अब तक दूध का उजाला भरा था, अब सिर पर चुनर डालते ही वो गाल सुर्ख लाल हो जाते हैं। सजती संवरती दुल्हन रस्म दर रस्म किसी और की होती चली जाती है। माता पिता के मन में अनेकों सवाल उभरने लगते हैं कि नया घर हमारी बिटिया को उतने ही प्यार से तो अपनाएगा ना, लाड़ों का वर ढूंढने में हमने कोई कमी तो नहीं रखी ना, हमारी बिटिया खुश तो रहेगी ना। ऐसे तमाम सवालात के बीच बारात आ जाती है।

विवाह के समय लोग कई सारी तस्वीरें खींचते हैं, पर माँ पिता और दुल्हन के मन की तस्वीर अगर कोई ले पाता तो जान जाता कि उनके मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। कहीं उम्मीद की धूप है तो कभी अनजाने भय का कोहरा, कभी भीगी भीगी से जुदाई की फुहार है तो कभी आंखों में नमी, कभी अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते माता पिता कई सवालों से घिरे होते हैं। इन तमाम बातों के बीच बिटिया नए घर के लिए विदा होती है। जाते समय आशीष की पोटली भी उसके साथ जाती है, जिसमें होती है कई सारी सीख और नसीहतें। उस घर को अपना बनाने की सीख, मान और प्रतिष्ठा को सहेजने की सीख, सबको अपना बनाने की सीख। भावों की लहरों पर सवार होकर वो बाबुल का घर छोड़ देती है।

विवाह यानी एक जीवन का प्रारंभ, एक नया संसार। ये जितना स्त्री के लिए नया है उतना ही पुरुष के लिए भी होता है। दोनों के मन में कई सपने और कई अपेक्षाएं होती है। शादी के बंधन में दो परिवारों का मिलन होता है। खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए सभी के स्नेह और सामंजस्य की जरूरत होती है। ये बंधन बना रहे और आगे चलकर सुखद परिणाम दे, इसके लिए घर के अन्य लोगों का सहयोग भी अपेक्षित होता है। नहीं तो ये बंधन टूटने में देर नहीं लगती। समझदारी और सहजता के साथ साथ सात फेरों के इस बंधन को प्रेम से लबरेज रखा जा सकता है। हाँ, ये संभव है। हाँ।

0: उपलब्ध है?
1: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
2: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
1: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
2: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
3: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
3: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
2: क्या ये जांच

आइए सुने चित्रलोक। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आवाजें सोनू निगम और अलका याग्निक की हैं। पहले गाने में जावेद अख्तर के बोल अनु मलिक की तर्ज है।

जावेद अख्तर का लिखा ये गाना कहता है, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। और पंछियों से ये याद आया कि आज बर्ड मैन ऑफ इंडिया सालिम अली की याद का दिन है। 20 जून 1987 को 90 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। सालिम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भारत में पक्षियों का जितना अध्ययन किया है, एक जीवन में कोई भला इतना नहीं कर सकता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से जुड़े रहे सालिम अली, और उन्होंने पक्षियों पर कई किताबें भी लिखी हैं। जर्मनी में जाके उन्होंने पक्षी विज्ञान की ट्रेनिंग ली थी और बर्लिन यूनिवर्सिटी में उनके गुरु बने इरविन स्ट्रेसमैन। 1930 के बाद जब वो भारत लौटे तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया था पक्षियों को लेकर, और उनकी कई किताबें जो हैं पक्षी विज्ञान पर हैं और बहुत ही मशहूर हैं। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के लिए उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं, बहुत सारे जर्नल्स भी लिखे हैं। उनका एक लेख है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ संडे मॉर्निंग, बहुत ही मशहूर है। और इसके अलावा उनकी सबसे ज़्यादा मशहूर किताब है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, यानी भारत में पाई जाने वाली तमाम जो चिड़ियाएं हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अध्ययन किया था। जंगलों में अपनी दूरबीन और अपने बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर भटकते रहते और पक्षियों का अध्ययन करते रहते। ऐसे जुनूनी लोगों को सलाम जो पर्यावरण के लिए कर देते हैं सारा जीवन उनके नाम।

0: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।
1: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
2: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
3: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
2: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
3: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
2: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
3: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: है विश्व योग दिवस और इस बार की थीम है बढ़ती उम्र के साथ योग। विविध भारती लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम। हमारे खास मेहमान हैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
1: बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है श्वास से रिलेटेड, श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है,
1: काफी होता है।
0: मैटिनी शो 20 जून सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर। सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है वास्तव।

0: गीता जितिन ललित की तरफ से सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें। फिल्म का नाम था वास्तव। कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।
1: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
2: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
3: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
2: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
3: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: लिए आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक,
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुर

0: कर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी
1: हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम के अंत में तेरे नाम फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज।

0: इसी के साथ आवाज का चित्रलोक कार्यक्रम खत्म होता है।
1: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
2: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
3: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
2: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
3: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
2: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
3: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097

0: पर कॉल कीजिए। यूटी चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कार्यक्रम आज का अखबार लेकर हाजिर हैं हम।
2: आज का अखबार।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आज का अखबार में मैं हूं आपके साथ रतीश कुमार। दोस्तों, आजकल बच्चों की छुट्टियों का समय चल रहा है, वो समय जिसका इंतजार बच्चे पूरा साल करते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया, पहले जहां छुट्टियों का मतलब था खेल, मस्ती, दोस्तों के साथ दौड़ना, वहीं आज छुट्टियों का मतलब बन गया है मोबाइल, वीडियो गेम और घर के अंदर बैठना। क्या मोबाइल में खेलना सच में उतना मजेदार है जितना मैदान में दोस्तों के साथ खेलना? क्या स्क्रीन पर जीतने से ज्यादा खुशी असली खेल जीतने में नहीं मिलती? सोचिए, जब आप बाहर खेलते हो, आप हंसते हो, दौड़ते हो, गिरते हो, फिर उठते हो, यही तो असली जिंदगी है जो आपको मजबूत बनाती है। मोबाइल आपको सिर्फ समय बिताना सिखाता है, लेकिन आउटडोर गेम्स आपको जिंदगी जीना सिखाती हैं, और इसमें पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है। बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। अगर आप मोबाइल में व्यस्त रहेंगे तो बच्चों से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो बाहर खेलें? छुट्टियां केवल बच्चों के लिए नहीं, ये परिवार के साथ जुड़ने का मौका भी है। कभी बच्चों के साथ सुबह या शाम को पार्क जाएं, उनके साथ क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल या कोई अन्य भागदौड़ वाली गेम्स खेलें, या फिर बैठकर उनसे बातें करें, उन्हें जानने की कोशिश करें। यकीन माने, यही चीजें आपके लिए हंसी यादें बन जाएंगी। ये बच्चे हमारे देश का उज्जवल भविष्य हैं, और इनकी बेहतर देखरेख और अच्छी सोच और समझ की जिम्मेदारी हमारी है।

केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित कथित अवैध निर्माणों के तहत चलाया बड़ा अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आगामी मॉनसून और मॉनसून पश्चात मौसम को देखते हुए डेंगू और मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए देश भर की तैयारियों की समीक्षा की।

तीन महीने से अधिक समय के बाद एलएनजी टैंकर दिशा सफलतापूर्वक हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके गुजरात पहुंचा। मैक्सिको दक्षिण कोरिया को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी।

विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 के प्रभावी और सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय देश भर में 100 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों की करेगा तैनाती।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श किए जारी। और सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अधिसूचित किया। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में फिलहाल बस इतना ही।

0: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी
2: कार्यक्रम आज का अखबार का आप आनंद उठा रहे हैं। आइए अब आपको क्षेत्रीय समाचारों से रूबरू करवा दें।

पंजाब सरकार ने जीएसटी और वैट के पुराने बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरू। संपत्तियां सार्वजनिक कर नीलामी का अभियान किया शुरू। पंजाब में तापमान में 2.4 की गिरावट। आज और कल आंशिक बादल छाए रहने की उम्मीद। गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत। 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। पंजाब में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरणों से की जाएगी दिल की जांच। 3 जिलों में बतौर पायलट प्रोजेक्ट शुरू की जाएगी ये सुविधा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सिविल सेवा में भर्ती विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगाई। ग्रीन पंजाब मिशन के तहत पंजाब सरकार कृषि वानिकी को देगी बढ़ावा। खेती के साथ साथ वनों से अतिरिक्त आय का साधन बनाएगी किसानों के लिए। हरियाणा के 49 सरकारी कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शारीरिक शिक्षा विषय शुरू किए जाएंगे। हरियाणा कर्मचारी आयोग ने ग्रुप डी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरू। 3 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा में धान के सीजन में खाद की सुचारू आपूर्ति के लिए मुस्तैद सहकारी माध्यम से करेगा 60% खाद की आपूर्ति और 40% प्राइवेट डीलर्स के माध्यम से। हिमाचल प्रदेश में आज और कल 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 23 जून से कम होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें 21 जून को होने वाली नीट 2026 परीक्षा के अभ्यर्थियों को निशुल्क यात्रा सुविधा देगी। क्षेत्रीय समाचारों में फिलहाल बस इतना ही।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: आज का अखबार कार्यक्रम का आप आनंद उठा रहे हैं, आइए अब आपको स्थानीय सुर्खियों से रूबरू करवा दें।

0: नीट 2026 परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी आयोजन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन तैयार। 7 केंद्रों पर 3,800 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। चंडीगढ़ शहर के 42 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 11वीं कक्षा के दाखिले के लिए शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की शुरू। 25 जून तक कर सकते हैं आवेदन। मौसम विभाग ने 20 और 21 जून को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई। 22 जून को बारिश की संभावना। बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए शहर के सेक्टर 17 स्थित तिरंगा पार्क में 21 जून को 3,500 लोग एक साथ करेंगे योग। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने सेफ फ्यूल कैंपेन को दी मंजूरी। हर बुधवार नो व्हीकल डे मनाने की अपील। स्थानीय सुर्खियों में फिलहाल बस इतना ही।
1: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण

0: इस संगीत के साथ अब रतीश कुमार को कार्यक्रम आज का अखबार समाप्त करने की दीजिए इजाजत।
1: आज का अखबार।
0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। हिंदी समाचार अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
3: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा

0: करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचकल करंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचकल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री इचकल करंजी के कल्पना अवडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिनमें पर्यवेक्षकों, कोऑर्डिनेटर, पुलिस बल और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं। एनटीए ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीकों को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति का आकलन किया गया और आगे की रणनीति तैयार की गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माही में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
4: सूट, साड़ी, लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224। FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनिए कार्यक्रम म्यूजिक #instaface। इंस्टाग्राम पर

0: आपकी फरमाइशों का सिलसिला हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत सुनने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें अपनी फरमाइश भेजें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है AIR चंडीगढ़। तो FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनना न भूलें हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
1: और दोस्तों अब वक्त है सफर सुरीला सा का। आगाज करते हैं त्रिदेव फिल्म के गीत के साथ। आवाजें अमित कुमार, सपना मुखर्जी व साथियों की और गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं। संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

सफर सुरीला सा का आप आनंद उठा रहे हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं अनाड़ी फिल्म से गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सफर सुरीला सा का कार्यक्रम का आप आनंद उठा रहे हैं और दोस्तों अब आपको सुनवा रहे हैं फिजा फिल्म से गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत के बोल गुलजार ने लिखे हैं और संगीत से सजाया है ए आर रहमान ने।

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता।

0: साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जनक कल्याण के।
2: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
3: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
2: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
3: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
2: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
3: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
2: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल, 15

0: ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
1: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
0: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
1: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक PLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: और कार्यक्रम सफर सुरीला सा का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं आंदोलन फिल्म से। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में, गीत के बोल समीर के हैं, संगीत नदीम श्रवण का।

0: संख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। वक्त है कार्यक्रम पॉप टाइम का।

0: इस गीत के साथ सफर सुरीला सा यहीं होता है समाप्त।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या

0: मेरे गैस सिलेंडर जैसे कीमती भाजी।
1: हेलो पिंके, हो गए आते ही शुरू, सुधर जाओ।
0: भाजी आपकी कीमत ही तो बधाई है, आपको तो खुश होना चाहिए टीड़ी टी करके।
1: पिंके तुम नहीं सुधरोगे, मैं गैस की सिलेंडर जैसा, ये बात कुछ हजम नहीं हुई।
0: भाजी गैस तो गैस ही है ना, हजम कहाँ होती है टीड़ी टी करके।
2: जलवा जलवा, जलवा।

0: लेकिन के आज शन्नो जी फिर नहीं आई।
1: हाँ जी बाजी, नहीं आई, वो अपने मैके गई हैं गोबर की पाथियां और लकड़ियों का इंतजाम करने।
0: क्यों
1: बाजी, बड़े पलक्कड़ हैं आप, भूल गए? ओए होए, गैस कितनी महंगी हो गई है, टीडी टी करके। वैसे भाजी, आपके घर में एक साल में 4 से ज्यादा सिलेंडर तो लगते नहीं होंगे, टीडी टी करके।
0: नहीं नहीं पिंके, ऐसी बात नहीं है
1: भाजी। ऐसी ही बात है, हमेशा आप पिघो के दाले बनाते हो, छोटे बर्नर पर ज्यादा खाना बनवाते हो, कभी भी गैस की एक तक फजूल नहीं जाने देते, टीडी टी करके।
0: पिंके सही है ना, जितनी गैस हम बचाएंगे उतनी ही हमारी जेब बचेगी।
1: हाँ जी भाजी, नहीं तो मंगाई जेब कुतरों की तरह जेब कुतर देगी, टीडी टी करके। भाजी अब आप अपनी गैस बचाएं और श्रोताओं को एक वधिया सा गाना सुनाएं, नहीं तो श्रोता फिर कहेंगे बातें ही करते रहते हैं, गाना तो सुनाते नहीं, टीडी टी करके।

0: ओए पाजी, ये कौन जेब कुतरा आ गया टीरी टी करके।
1: पिंके बेची पाजी।
2: पिंके जेब कुतरा नहीं, ये तो तुम्हारा दोस्त है सोहन।
0: हाँ जी पाजी, 12 महीने जुकाम का सताया, जुकाम का गोल्डन मरीज है हमारा सोहन।
1: पिंके बेची पाजी, दरवाजा खोलो।
0: रुक जा सोन, तू कौन सा गैस सिलेंडर ले आया है टीड़ी टी करके।
2: सोहन आ जाओ अंदर, खुला ही है दरवाजा।
0: हाँ सोन, खुला ही है दरवाजा मेछी मैल का, आ जा अंदर निछ मार के।
1: दबस्ते बेची पाजी। हेलो पिक, एक तो इस जकाब ने मुझे कहीं कारी छोड़ा।
0: पर तुझे हम पर पता नहीं किसने छोड़ा टीड़ी टी करके।

0: भाई आपने सोहन को आज ध्यान से नहीं देखा?
1: हाँ पिंके, आज सोहन कुछ अलग टाइप का लग रहा है।
0: अलग टाइप नहीं पाजी, सोहन आज पूरा
1: सलमान खान लग रहा है।
0: नहीं पाजी, गैस एजेंसी का ड्राइवर लग रहा है, टीड़ी टी करके।
2: ओ पिंके, तुझे मेरी वैल्यू नहीं पता, बहुत कीमती चीज हूँ मैं। हाँ
0: ना, तू बड़ा गैस का सिलेंडर है जो बहुत कीमती है, टीड़ी टी करके।

0: यार सोन, आज तूने कोई सलाह सलूह नहीं लेनी मेछी पाजी से?
1: हाँ यार पिक्के, एक तो इस जकाब ने मेरा नास ही मार दिया है।
0: ओए होए, अब तू हमारा नास ना मार। जल्दी से सलाह ले ले मेछी पाजी से, टीडी टी करके। हाँ
1: मेछी पाजी
0: है, मेछ की सलाह?
1: ओ नहीं यार पिक्के, एक तो इस जकाब ने मेरा दास ही मार दिया है।
0: हाँ हमें पता है, तू गोल्डन जकामी मरीज है, टीडी टी करके। ओ अब सलाह लेगा कि होर फूक दूं तुम्हें, गैस का गुब्बारा बना दूं फूक दे दे के।
2: पिंके क्यों सता रहे हो सोहन को?
0: पाजी मैं कहा सता रहा हूँ, सोहन को तो सता रहा है 12 महीने जुकाम टीड़ी टी करके।
1: बेची पाजी मैं गैस का सिलेंडर लोड पर देने की कंपनी खोल लूं?
0: हाँ यार सोहन, पहली बारी देखेंगे लोग ऐसी जुकामी फाइनेंस कंपनी टीड़ी टी करके।
2: सोहन कल तक तो तुम चीजें लोन पर लेने की सलाह लिया करते थे, आज ये सिलेंडर लोन पर देने की कंपनी?
0: हाँ यार सोन, ये गैस का सिलेंडर लोन पर देने की स्कीम तेरे जकामी दिमाग में आई कहाँ से? हैं? जरूर तेरे साले ने डाली होगी तेरे जकामी दिमाग में ये सिलेंडर लोन पर देने की स्कीम टीड़ी टी करके।
1: हाँ यार पिक्के, मेरा साला कह रहा था जीजे सिलेंडर लोड पर देने की कंपनी खोल लेते हैं, बोटी कमाई होगी बोटी।
2: पर सोहन मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो काम करो सोच समझ के करो, किसी के कहने से नहीं।
0: हाँ सोहन, मोटी कमाई करते करते कहीं अपनी जमा पूंजी ही ना लटा बैठी मेरे जकामी यार।
1: हाँ यार पिक्के बस समझ गया, बेची पाजी का कहना बिल्कुल ठीक है, मैं घर जाके पहले सोचता हूँ, इस काम को समझता हूँ, फिर देखूंगा कि गैस का सिलेंडर लोड पर देने की कंपनी खोल रही है कि नहीं। मैं अपने साले को ही समझाऊंगा, ओ देख भाई ऐसे ही थोड़ी मोटी कमाई होती है कोई।
0: हाँ सोन, कहीं तेरी जकामी फाइनेंस कंपनी को घाटा पै गया तू सहन नहीं कर पाएगा, एक तो तू जकाम का मरीज और ऊपर से ये घाटा, मेरे कहने का मतलब है तब पछताए क्या होता है जब गैस का सिलेंडर लगा जाए जकाम टीड़ी टी करके।

0: मेथी भाजी अब मैं जाऊँ, चन्नो जी के बगैर मेरा दिल उदास हो गया है टीरी टी करके।
1: हाँ हाँ पिंके जरूर। मेथी भाजी मैं भी जाऊँ। हाँ हाँ सोहन तुम भी जाओ।
0: अच्छा भाजी चंगा भाई सोहन जुकाम के गोल्डन मरीज ओके बाय।
1: नमस्ते मेथी भाजी। बाय पिंके। बाय सोहन। बाय पिंके। श्रोताओं आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपनी राय जरूर दें। अब आज का पॉप टाइम प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पॉप टाइम।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
6: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
5: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
6: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
5: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
6: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
5: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।

0: खर्च बड़ी पहुंच।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। वक्त है कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस का।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
2: श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट AIR चंडीगढ़ पर अपनी फरमाइश लिखकर हमें बता सकते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि आपकी पसंद को सर आंखों पर रख आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाएं। और हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, फरमाइश करता है यार अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर ने अपनी फरमाइश लिखकर भेजी है। सुनना चाहते हैं कर्तव्य फिल्म का गीत, तो आपको सुनवाते हैं ये गीत इस संदेश के बाद।
3: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
4: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
4: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
3: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
4: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
3: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
4: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक BLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
5: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश ललिता हुकुम चंद ईशांत निशांत दुधला मंडी अंबाला कैंट से सुनना चाहते हैं कामचोर फिल्म का गीत।

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम का आप आनंद उठा रहे हैं और फरमाइश हम तक पहुंची है खुर्जा उत्तर प्रदेश से। तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा की सुनना चाहते हैं अमर अकबर एंथनी फिल्म से ये गीत।
3: हम सच बोला है, हमको तुमसे

कार्यक्रम में अगली फरमाइश ताल फिल्म से गीत सुनने के लिए आई है। चंडीगढ़ सेक्टर 23 से विक्की, रेनू, बुलबुल, अक्षी और लिखकर भेजा है प्रणाम सभी श्रोताओं को।

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विश्व

0: विशेष अवसर की शुभकामनाएं।
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
0: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम का आप आनंद उठा रहे हैं और अगली फरमाइश हम तक पहुंची है हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत सुनने के लिए। सतीश अनेजा, बिमला अनेजा चंडीगढ़ से हमें ये लिखकर भेज रहे हैं अपना मैसेज और साथ ही किसी भी

आकाशवाणी चंडीगढ़। म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम का आप आनंद उठा रहे हैं और अगली फरमाइश हम तक पहुंची है हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत सुनने के लिए। सतीश अनेजा, बिमला अनेजा चंडीगढ़ से हमें ये लिखकर भेज रहे हैं अपना मैसेज और साथ ही किसी भी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मनस्वी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम का आप आनंद उठा रहे हैं और तेरे नाम फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। पवन कनौजिया, वंदना कनौजिया, गरिमा कनौजिया श्री आनंदपुर साहब से इन्होंने हमें फरमाइश भेजी है, तो आपको सुनवाते हैं ये गीत इस संदेश के बाद।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: से मेरी लगन लगी।
1: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस का आप आनंद उठा रहे हैं और शोले फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं और फरमाइश करने वाले हैं सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, हिमांशु गुलाटी और देवांशु गुलाटी।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।
4: कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस में अगली फरमाइश विजय पथ फिल्म की गीत की सुनना चाहते हैं। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ पर भड़ी से महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश मेरे हमसफर फिल्म की गीत सुनने के लिए इंदु भाम 12A पंचकुला से हमें लिखकर भेज रही हैं। प्ले कर रहे हैं आपकी पसंद का गीत।

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: और दोस्तों, कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, चोरी चोरी फिल्म से। फरमाइश करता है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह,

श्रोताओं, इसके अलावा हम तक और भी कई फरमाइशें पहुंची हैं, उनको हम शुमार करना चाहेंगे। सेक्टर 25 पंचकुला से मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद आतिफ असलान बाबू की आई थी। इसके अलावा दंतेरगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्री मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा की फरमाइश हम तक आई थी। दास मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर, हरिद्वार उत्तराखंड से इन्होंने अपनी फरमाइश भेजी थी। इसके अलावा झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया की फरमाइश हम तक आई थी। साथ ही विशाल कुमार, विकास कुमार सेक्टर 20 डी चंडीगढ़ से अपनी फरमाइश लिखकर भेजे थे। उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना की, और साथ ही पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे ढींगरा की हम तक फरमाइश आई थी। लेकिन वक्त के चलते हम आपकी फरमाइश अगली बार जरूर पूरी करेंगे।

0: इस गीत के साथ अब रतीश कुमार को कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी।

0: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरीका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

पराया धन, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आरडी बर्मन की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में आपको वो गीत सुनवा रहे हैं जहां कहीं ना कहीं इंतजार है, मुलाकात है।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, और अंतराल पर जाने से पहले आप सुन रहे थे खानदान फिल्म से गीत। लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लायलपुरी ने उसे लिखा और खयाम का संगीत था।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विजय पथ फिल्म से। जमीर काजमी ने इसे लिखा था, अनु मलिक का संगीत। यादों की महफिल में आज वो गीत जहां कहीं इंतजार है, मुलाकात है और प्यार है।

0: फिल्म पाप से इस गीत को अभी आप सुन रहे थे, अनु मलिक ने संगीत दिया था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

हरिहरन और सुखविंदर सिंह की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे ताल फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और एआर रहमान का संगीत। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं दिल्ली 6 इस फिल्म से। ऐश किंग की आवाज, प्रसून जोशी ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत।

विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर 2 से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, अनु मलिक और मिथुन का संगीत।

0: अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा, अंजाम फिल्म से इसे लिया गया था। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यही संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित होंगे, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित किया जाएगा दिन में 2 बजे। कार्यक्रम सदाबहार नगमे का प्रसारण समय रहेगा दिन में 2:30 बजे। आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत होगा 3 बजे। नाट्य तरंग कार्यक्रम में बाद दोपहर 3:30 पर नाटक मृत्युहीन प्राण का पहला भाग प्रसारित किया जाएगा।

शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज। आज इस कार्यक्रम में कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से बातचीत का तीसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे आप सुन सकते हैं शाम 5:20 पर। शाम 5:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:30 पर। रात 7

बजकर 47 मिनट पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10 बजकर 32 मिनट पर। अभिनेता अमरीश पुरी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला सुनिए शाम 7 बजे। हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे सुनो कहानी के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम चित्रलोक होगा रात 8:15 बजे। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए।

रात 9:30 पर कार्यक्रम सुनिए आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर केंद्रित रहेगा।

और रात 10 बजे कार्यक्रम होगा छाया गीत। आप सुन रहे थे अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

0: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाद दोपहर हुगली जिले के तारेश्वर से 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के तहत 9,44,00,000 से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली जाएगी। 23वीं किस्त में 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपये डाले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70,00,000 जॉब सृजित हुई है। करीब 20

0: 60 युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
0: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के गुरुग्राम स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भी प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने मुख्य अतिथि तथा गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री के संबोधन और राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में उद्योग प्रतिनिधियों, नियुक्ताओं और कर्मचारियों ने भी भाग लिया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रोत्साहन राशि वितरण से पूर्व अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना देश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि उद्योग और श्रम एक दूसरे के पूरक हैं। यदि उद्योगों का विस्तार होगा तो रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और कुशल श्रमिकों की भागीदारी से औद्योगिकी की प्रगति भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए रोजगार आधारित विकास मॉडल और विशेष बल दिया जा रहा है, जिसमें ये योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ और हरियाणा में आज से 22 तारीख के बीच कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हूं तुसी चंचल शर्मा तो प्रतिशत खबरें सुनो। कल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय सेहतमंद उम्र लिए योग रखा गया है। यह विषय हर उम्र में योग की महत्ता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने लिए सभ्याचारक मंत्रालय देश भर में 100 थावां पर विशेष समागमों का आयोजन कर रहा है। यह समागम भारत की अमीर विरासत और योग रिवायतों का विखाला करेंगे। इस दौरान केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे केंद्रीय संचार ब्यूरो जलंधर वालों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले च बीते दिनी डीएवी कॉलेज जलंधर विखे एक जागरूकता प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस योग सैशन विच 200 तो वध विद्यार्थियों ते अध्यापकों ने हिस्सा लिया। योग सैशन की अगवाई योग इंस्ट्रक्टर शैलेश जैन ते जय मित्तल ने की। उन्होंने आयुष मंत्रालय वालों निर्धारित योग प्रोटोकॉल मुताबिक सिखलाई दिंदिया संतुलन ते तनाव तो राहत लई वख-वख योग आसना ते प्राणायाम करवाए। कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर अनूप कुमार ने विद्यार्थियों नूं संबोधन करदिया विद्यार्थी जीवन च योग की महत्ता ते चानना पाया। उन्होंने विद्यार्थियों नूं लंबे समय की सेहत ते तंदुरुस्ती वास्ते योग नूं अपने रोजमर्रा का हिस्सा बनाने की सलाह दी। उन्होंने प्रोग्राम के आयोजन लई सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के उपरालों की भी शलाघा की। केंद्रीय संचार ब्यूरो की नुमाइंदगी करते हुए गुरकमल सिंह ने दसिया कि केंद्रीय संचार ब्यूरो लोगों तक केंद्र सरकार दी वख-वख योजनावां बारे जानकारी पहुंचाने लई एक नोडल एजेंसी वजों काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नूं अज उन्हां दे जन्मदिन दे मौके ते वधाई दित्ती है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सादगी नम्रता और लोक सेवा प्रति वचनबद्धता देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने देश की शानदार सेवा की है, खास तौर पर समाज के वांझे वर्गों की भलाई लिए वचनबद्ध रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू की लंबी उम्र से तंदुरुस्त जीवन की कामना की। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संदेश च कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के कार्यकाल दौरान देश के औरतों के सम्मान से लोक भलाई के खेत च

0: अनेक प्राप्तियां कीतियां ने। उन्हां कहा कि संघर्ष समर्पण ते देशभगती नाल भरपूर राष्ट्रपति मुर्मू दा जीवन नारी शक्ति नौजवानां ते देश दे हर नागरिक लई प्रेरणा दा स्रोत है। पंजाब के वख-वख शहरां विच अपने घरां तों दूर रहण वालियां कामकाजी औरतां दी सुरक्षा अते सहूलत वास्ते समाजिक सुरक्षा महिला ते बाल विकास विभाग पंजाब वल्लों मोहाली जलंधर ते अमृतसर विखे पंज वर्किंग वूमेन होस्टल बनाए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री डॉ बलजीत कौर ने कल मोहाली विखे सैक्टर 66 विखे 7 मंजिलां दे वर्किंग वूमेन होस्टल की उसारी शुरू करवाने मौके यह जानकारी दी। उन्होंने दसिया कि इस होस्टल के करीब 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिस विच उसारी लोक निर्माण विभाग वालों जंगी पद्धर से जारी है। उन्होंने दसिया कि यह मोहाली विखे बन रहा तीजा वर्किंग वूमेन होस्टल है। इस तों इलावा निफ्ट मोहाली फेज 1 विखे 25 करोड़ तों वध दी लागत नाल 150 औरतों के रहने की समर्था वाला होस्टल भी निर्माण अधीन है। उन्होंने कहा कि विभाग वालों इन होस्टलों रहने वाली महिलाओं को बहुत ही वाजिब किराए से रिहायश उपलब्ध करवाई जाएगी। सीमा सुरक्षा बल BSF ने बीते कल पंजाब पुलिस के नाल एक सांझे ऑपरेशन च एक व्यक्ति नूं अमृतसर च भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सरहद नेड़ों गिरफ्तार करके उसके कब्जे चो 1 AK-47 राइफल 25 पिस्तौल 368 अणचले कारतूस ते 48 मैगजीन बरामद किए ने। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने दसिया कि यह कार्रवाई सूबा विशेष ऑपरेशन सैल अमृतसर वल्लों अमल च लैंदी गई। मुलजम की पछाण अमृतसर की रूपनगर कलोनी वासी रोहन खौसला वजो हुई है। टीम ने मुलजम कोलों अमरीका की बनी एक बुलेट प्रूफ जैकेट ते हथियार तस्करी लिए वरती जाती उसकी कार भी जब्त की है। अगलेरी कार्रवाई की जा रही है। इधर जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने भी विदेशी आधारित हैंडलर नाल जुड़े एक गिरोह के 4 मैंबरों को 3 पिस्तौलों ते अणचले कारतूसों समेत गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जानकारी देंदिया दसिया कि मुलजम विदेशी आधारित हैंडलर के निर्देशों से काम कर रहे सन। जलंधर के शहीद भगत सिंह नगर जिले च कई गोलीबारी दी घटनावां दी योजना बनाउण च भी शामिल सन। जलंधर कमिश्नरेट विखे मामला दर्ज करके अगलेरी कार्रवाई की जा रही है। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर च तेज हवावां दे नाल गरज चमक नाल बारिश होने की संभावना जताई है। भारत ते अफगानिस्तान दरमियान तीजा ते आखिरी एक रोजा क्रिकेट मैच अज दोपहर चेन्नई दे MA Chidambaram स्टेडियम च खेडा जाएगा। यह मैच हुण तों थोड़ी देर बाद दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मेजबान टीम पहला ही 2-0 की लीड नाल लड़ी जीत चुकी है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा गोडे की सट ठीक होने तों बाद आखिरी मैच लई टीम च वापस आ गए ने। इस दे नाल ही प्रदेशक खबरां खत्म हुईआं। साडा एक्स हैंडल है @RNAJalandhar। राष्ट्रीय खबरों का अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे 1:40। नमस्कार।
1: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं अनोखी अदा फिल्म के गीत से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

हसीना मान जाएगी। आइए सुनते हैं इस फिल्म में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को। गीत को लिखा है अख्तर रोमानी ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फांसी फिल्म में मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित को।

0: हंसी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
2: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
2: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
1: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
2: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
1: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
3: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।

0: पटना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
4: मौसम चाहे कैसा भी हो, सुरीला सफर में जो मौसम होता है वही आसपास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे हैं जो लिखते हैं कि बारिश के दिनों में मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी दोनों छोटी थी, दोनों हाथ पकड़कर छत पर जा रही थी, उनको बारिश में भीगना है, पर सब उनको मना कर रहे थे। वो छाता लेकर बड़ा सा और भीगती रही और बहुत देर तक आनंद लेती रही, और थोड़ी देर के बाद छतरी बंद करके खूब भीगी और फिर खूब मजे किए। ये बचपना उनका देखकर हम सब हंस दिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुंज से लिख रहे हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है, बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन तापमान 27-28 के बीच ही रहता है। कुल मिलाकर प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं, जाने कैसी ये बारिशों की मनमर्जियां हैं, कहीं जमकर बरसना, कहीं बस अर्जियां हैं,

0: हैं बेबस सब इनके आगे। मेरे गांव के आसमां से यूं तो रोज गुजर रहे हैं बिना बरसे ही बादल, न जाने कैसी ये बारिशों की खुदगर्जियां हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी श्रोता लिखते हैं कि अभी तक संदेश नहीं लिख पाए क्योंकि कहीं बाहर थे और अभी घर पहुंचे हैं, अभी माँ ने भोजन दिया है और साथ ही साथ संदेश भी लिखेंगे। साथ ही एक और श्रोता है, वो लिख रहे हैं कि मैं गा रहा हूँ, मेरी श्रीमती जी गा रही हैं, रेडियो के सभी श्रोता गा रहे हैं, विविध भारती गा रही है और ये सुहाना सफर में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता है, वो अयोध्या से हमें संदेश भेज रहे हैं कि यहाँ पर तापमान चढ़ा हुआ है, मई में एक दो बार बारिश हुई, जून का 20 दिन इंतजार में गुजर चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, कभी कभी एक दो बार आंधी की कुछ फुहारे पड़ी है, जून 9 के बराबर है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म से ये जो गीत उन्होंने सुना, इसमें जब ये रिलीज हुई थी उसके बाद नायक और नायिका की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी, इतने लोकप्रिय हो गए थे वो, ऐसा जादू चल गया था कि लड़का लड़की शब्द आम बोलचाल भाषा का हिस्सा बन गया था और ये बहुत ही खूबसूरत गीत उन्हें लगता है उस दौर की मासूम मोहब्बत और कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर जाता है। हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये गीत बहुत ही पसंद आ रहा है उन्हें और अभी उनके शहर में बारिश नहीं आई है, बारिश के गीत तो बहुत सारे हैं और कुछ गीत उन्हें याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए जो हम आपको सुनवा रहे हैं और आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुरीला सफर।
1: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
2: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
2: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
1: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
2: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
1: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
3: जिम्मेदार मतदाता बनें, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मैंने प्यार किया, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था। हमारे श्रोता लोग जो हैं वो हमें मौसम के बारे में बता रहे हैं। जालंधर सिटी में तापमान 37 डिग्री है इस वक्त। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि मेरे बेटी, दामाद, बेटा और नाती वैष्णो देवी घूमने गए हैं और सूचना मिली है कि वहाँ का मौसम बहुत ही हसीन, सुंदर और ठंडक से भरा हुआ है। जी हाँ, वहाँ पर गर्मी के वक्त भी बहुत अच्छा मौसम होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चिलचिलाती धूप में बारिश के गाने सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स के एग्जाम में केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हों। हमारे एक श्रोता ने अपना किस्सा साझा किया है कि धुआंधार बारिश में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हो गई थी। वो नए नए डाक विभाग में सिलेक्ट हुए थे और नासिक शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में उन्हें जाना था। बाइक से अप डाउन करते थे, बीच में एक नदी थी जिस पर एक पुल हुआ करता था और बारिश के दिनों में ऑफिस की छुट्टी होने पर वो निकल पड़े। ऑफिस की छुट्टी होने पर, अच्छा, जब ऑफिस ख़त्म हुआ तो निकल पड़े और ज़ोर से बारिश हो रही थी और पुल पानी पर चढ़ चुका था और ऐसे में जब वो क्रॉस करना चाह रहे थे उसे तो बहाव इतना तेज़ आया कि बाइक समेत पानी में धकेल दिया गया पानी के बहाव ने उनको। और गनीमत है कि अच्छा तैराक होने के नाते वो किनारे तक पहुँच गए लेकिन बाइक बह गई। जी हाँ, ये परेशानी तो होती ही है लेकिन अच्छी तैराकी ने आपको बचा लिया। और सचमुच कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को सीखना ज़रूरी होता है और होना चाहिए, शौक के तौर पर भी और एक पैशन भी होता है जो ऐसी ऐसे जब सिचुएशन आती है तो ऐसे में हमको बचा भी लेता है। एक और श्रोता है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। अहमद फराज की लिखी पंक्तियां हैं ये। एक और श्रोता है, वो कहते हैं कि 10 गीतों की लिखी हुई इबारत में से 8वें नंबर पर ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और इस

गीत में लता मंगेशकर ने ये पगला है इस इन शब्दों को बहुत ही अलग अलग तरीके से गाया है और गौर से सुनने लायक है। जी हाँ, अजमेर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि बारिश तो नहीं है, रिमझिम बारिश, हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है और काले बादलों का समा है, आसमान में बन रहा है और थोड़ी बहुत खुशी आती है पल भर की लोगों के चेहरे पर कि बारिश होगी, लेकिन काले बादल टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेते हैं। इंदौर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गाने सुनने के लिए बादल आ गए हैं, सुबह धूप थी लेकिन अभी अचानक मौसम में बदलाव आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारा मौसम, हमारे जो प्रोग्राम है वो सुन रहा है और इसीलिए तब्दीली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में अगला गीत।

0: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक BLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बनें, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: और दोनों में कंपटीशन लगा हुआ रहता है और इंसानों को परेशान करने का, तो इन सभी से ज़रूर बचें। बिल्कुल, जो भी ज़रूरी एहतियात है उसे बरतें और ज़रूर ज़रूर बचें इन सब चीज़ों से, क्योंकि बारिश तो है ही लेकिन साथ में बीमारियां भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा आती हैं, तो अपना ध्यान रखें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के जो गीत हैं ये लोगों को सुकून दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं ऐसा उन्हें लगता है क्योंकि गीत उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि भीगना तो तय है, चाहे बारिश में हो या गर्मी में। अभी दुकान पर काम करते करते हमारी बातें सुन रहे हैं वो, और बाहर घने बादल छाए हैं, दुकान के अंदर पसीने से भीग रहे हैं वो। 2019 की एक बात कहते हैं एक श्रोता, और उन्होंने लिखा है कि अगस्त महीने में पटना में इतनी बारिश हुई थी कि पूरा पटना बारिश से डूब चुका था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हुई वो पानी पीने की हुई। पीने का जो पानी था उसकी बहुत दिक्कत हुई, वो नहीं मिल पा रहा था, और जहाँ तहाँ कैसे करके इंतज़ाम किया गया मोहल्ले में, और कोई गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी उस वक्त। तो ऐसे में ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी देती है। जी हाँ, इन सब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश के फुहारों के साथ हंसी के सुरीले फुहारे तब निकले थे जब साथ में मेरी हमसफर थी और पैदल चलते हुए फोल्डिंग छतरी तेज हवा के कारण आधी ऊपर की तरफ हो गई थी। हम भीग भी रहे थे और हंस भी रहे थे। बहुत ही खूबसूरत संदेश, और अब ये गीत इस फेहरिस्त में।

गीत बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसके साथ ही हम बढ़ चले हैं इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर। आपके मैसेजेस मुझ तक बहुत से आए, मैंने कोशिश की है कि सबके मैसेजेस पढ़ूं, सबके संदेश पढ़ूं, लेकिन हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार ओले बरस रहे थे, साइज भी उनका ठीक ठाक था, फोन से वो पिक ले रही थी और उनकी गर्दन पर एक ओला आकर गिरा जो कि बहुत पेनफुल था। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बाइक पर बारिश में भीगते हुए घूमना बहुत पसंद था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आपके गीतों के साथ बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ पर बारिश भी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश है। और लेकिन अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। आपने आज का ये सफर तय किया अनुराधा के संग। इजाजत चाहती हूँ इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफर।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिलेंगी विवाह पर। एक बिटिया घर में जन्म लेती है और धीरे धीरे बड़ी होती है। माता पिता का दिल हर मोड़ पर उसकी बलाएं लेता है। छोटे छोटे हाथों से रोटी बनाती बिटिया, गुड़ियाओं से खेलती बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बचपन की पायल की वो छुन छुन धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और बिटिया के विवाह का समय आ जाता है। जिन गालों में अब तक दूध का उजाला भरा था, अब सिर पर चुनर डालते ही वो गाल सुर्ख लाल हो जाते हैं। सस्ती समरती दुल्हन रस्म दर रस्म किसी और की होती चली जाती है। माता पिता के मन में अनेकों सवाल उभरने लगते हैं कि नया घर हमारी बिटिया को उतने ही प्यार से तो अपनाएगा ना, लाड़ों का वर ढूंढने में हमने कोई कमी तो नहीं रखी ना, हमारी बिटिया खुश तो रहेगी ना। ऐसे तमाम सवालात के बीच बारात आ जाती है।

विवाह के समय लोग कई सारी तस्वीरें खींचते हैं, पर माँ पिता और दुल्हन के मन की तस्वीर अगर कोई ले पाता तो जान जाता कि उनके मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। कहीं उम्मीद की धूप है तो कभी अनजाने भय का कोहरा, कभी भीगी भीगी से जुदाई की फुहार है तो कभी आंखों में नमी, कभी अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते माता पिता कई सवालों से घिरे होते हैं। इन तमाम बातों के बीच बिटिया नए घर के लिए विदा होती है। जाते समय आशीष की पोटली भी उसके साथ जाती है, जिसमें होती है कई सारी सीख और नसीहतें। उस घर को अपना बनाने की सीख, मान और प्रतिष्ठा को सहेजने की सीख, सबको अपना बनाने की सीख। भावों की लहरों पर सवार होकर वो बाबुल का घर छोड़ देती है।

विवाह यानी एक जीवन का प्रारंभ, एक नया संसार। ये जितना स्त्री के लिए नया है उतना ही पुरुष के लिए भी होता है। दोनों के मन में कई सपने और कई अपेक्षाएं होती है। शादी के बंधन में दो परिवारों का मिलन होता है। खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए सभी के स्नेह और सामंजस्य की जरूरत होती है। ये बंधन बना रहे और आगे चलकर सुखद परिणाम दे, इसके लिए घर के अन्य लोगों का सहयोग भी अपेक्षित होता है, नहीं तो ये बंधन टूटने में देर नहीं लगती। समझदारी और सहजता के साथ साथ सात फेरों के इस बंधन को प्रेम से लबरेज रखा जा सकता है। हाँ ये संभव है, हाँ ये संभव है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: ओडिशा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडाबेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी

0: 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: मदन सिंह देव जी, प्रवति परिरा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश सिंह खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू होगा।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश

0: निर्देश दिए हैं।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
3: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छी की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
4: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
5: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक

नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने

0: पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने सोना फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण,
2: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जब जब फूल खिले फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

गीता दत्त की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म से। साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज थी। आप इस वक्त सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर मन्नाडे और साथियों की आवाजों में गीत आप मधुमती फिल्म से सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मेरे महबूब इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजें, अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मंच चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। आंखें फिल्म से हमने से लिया है, रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी ने से लिखा।

0: कभी कभी।
1: फिल्म आंखें से लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू ने। साथ ही शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना ने। और उल्लास, माफ कीजिए, अहिल्या नगर केड़गांव से भाऊ साहब नवथर, अक्षय, चंदन, जय कुमार और रुचिता ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से, संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और इसे सुनना चाहा था ककराला बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और समस्त परिवार ने, उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन ने, जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी शंभू दयाल खटक ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म से। अनजान ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहा था कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड से रियाद हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर ने इस गीत को सुनना चाहा था। गंगानगर बीकानेर से कैलाश सैनी, गोविंदा और उत्तम सोनी।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने।

0: कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यहीं समाप्त होता है।
1: मन चाहेगी।

साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा, बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिंपल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यही समाप्त होता है। मन चाहे गीत।

0: यह है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है। इस पार्क में अकेले अकेले लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं और भैया झूठ मूठ। चली ही जाओ अब।
1: जिनी।
0: हाँ?
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश। हाँ? आहिस्ता इधर इस तरफ।
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी। हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
2: उस तरफ, उधर, जाओ आगे।
1: जिनी,
0: हाँ?
1: तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
1: हाँ।
2: जुडू, भाई बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
3: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी?
2: नहीं, फिलिप्स गलत इंफॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडू, हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हें गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। This disgraceful on our part.
3: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
2: हाँ, वही तो देख रहा हूँ।
3: हाँ, बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
4: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
2: लुक छिप कर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ?
0: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
2: ठहरो।
0: हाँ?
2: कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
0: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
2: सांझ से? बस जी थोड़ी देर से, और अब इस सांझ ठेले तक।
0: जी

0: घर जा रही हूँ।
1: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
0: मीटिंग? नहीं तो नहीं देखी।
2: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात और क्या।
0: नहीं नहीं ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूँ?
2: हाँ हाँ जाओगी
0: जी।
2: जाओगी क्यों नहीं। अच्छा क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
0: जी हाँ।
2: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइश की कविताएं पढ़ती हो?
0: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
2: उसे जानती भी हो?
0: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे,
1: वो ऐसा कोई खास रिपीटेड कवि नहीं है शायद।
0: अच्छा तो अब मैं चलूं।
2: हाँ जाओ जाओ।
1: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मॉलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
2: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।

0: हाँ, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ माँ,
1: क्यों नहीं बैंड, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना,
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच इसे प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, ये मृत्यु के अधरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, ये छिपी के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या उठपटांग बके जा रहा है।
0: उठपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बंज, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूँ माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ।
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास? कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास? इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ, ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है। हाँ तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: और राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ, सच माँ, माँ हो माँ, तुम कवि बेंजामिन मोलेस की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
1: अरे छोड़ दी, पागल कहीं
2: मासी।
0: जीनी
1: आ बेटी, अंदर आजा। बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से हैं। वो परीक्षा नजदीक आ पहुंची है, तभी बैंक से इकोनॉमिक्स के चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
1: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
2: जी अच्छा।

0: जीनी, कौन सी परीक्षा तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है?
1: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
0: अच्छा, होगी कोई। पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पहेलियों का समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। खैर, इस कविता को सुनो। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की, गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश, क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में, जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में। यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला, रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
1: वाह वाह, क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यू आर नाउ अ पोएट एंड इन टाइम यू विल बी अ ग्रेट पोएट बेंच।
0: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
1: हाँ,
0: हकीकत यही है। खैर, अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
1: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
0: अरे, पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
1: किस लिए आई हो, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
0: नहीं,
1: कुछ भी नहीं समझते।
0: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
1: सारी बातें मुझसे कही नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती है। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ, क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं? क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
0: जिन्हें तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है। जिन्हें
1: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
0: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
1: बेंच,
0: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना। मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जीनी।
1: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौंक चौंक जाती हूँ।
0: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है जीनी।
1: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
0: जिनी हाथ छोड़ो, शायद मां आ रही है।
1: अच्छा, तुम्हें चाह रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
2: लिखाई पढ़ाई हो गई?
1: हाँ मौसी हो गई।
2: अरे, थोड़ी चाय तो पी कर जा।
1: नहीं, आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
2: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: सर बहुत ही भला लड़का है, जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव
1: चरित्र। विल यू स्टॉप टू डू?
0: यस सर, यस मिस्टर थॉमसन। मैं तो
1: कुछ नहीं जानते। तुम उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं।

0: पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और उन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
1: सारी गलत है। बेंजामिन मोलाइज भला लड़का है, उन ब्लैक स्वाइनों के लिए, हमारे लिए नहीं। इस बात को याद रखो।
0: यस सर।
1: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप सिलेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
0: अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत! तब तो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
1: यस, चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो। कॉले कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
0: ओके सर।
1: मेरा नाम थॉमसन है, स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता। हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों? सारा कुछ जलाकर राख कर डालूंगा। कमान चढ़ो।
0: यस सर।

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बापू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र के फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूं बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापड़कर।
2: नमस्कार।
1: बेंस अंदर आ जाओ ना।
3: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
4: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंज?
3: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
1: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार।
1: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
1: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
5: अच्छा अच्छा, बैठिए आप लोग, बैठिए।
1: बाबू जी, बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
5: अरे इसे भला नहीं जानूंगा मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसके कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
3: नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, भला मुझमें इतनी ताकत कहाँ?
6: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
3: देखिए, अब इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूँ।
5: अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
1: ठीक है बापू। बापू पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
5: अच्छा।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी
0: जिन्नी, आओ बेटी, आओ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
2: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
2: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली,
0: पर क्या
2: जाने वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरी लाल की, बेंच कहाँ है, कैसा है?
2: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
2: अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा।

0: एक मीटिंग है, शायद प्रिंस वहीं गया होगा।
1: ये मीटिंग कहाँ है?
0: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मासी।
1: मीटिंग, गुप्त समिति।
0: हाँ,
1: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
0: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा। उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी?
1: ठीक कहती हो बेटी, मेरा बहन जरूर राजी खुशी है, राजी खुशी ही रहेगा। हाँ।

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा ये निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ इसी क्षण इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
2: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापड़कर का सुझाव एकदम सही है,
0: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
3: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
1: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
3: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उइसिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
4: कौन? कौन हो सकता है? कौन है?
0: अरे, ये तो जोन्सबर्ग के नेता मिस्टर रोयांगा की आवाज है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो।
4: अरे, कैसे हुआ ऐसा?
0: क्या बात है?
4: क्या हुआ? खून?
0: खून भी क्या?
4: किसने ऐसा किया?
5: पुलिस ने?
4: ईश्वर,
5: यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया, चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दलबल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
4: ओ, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
5: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं कुछ ही दीवार फांद कर इस ओर भागाया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
4: ठहरिए, पहले मैं ये बैंडेज बांध दूं।
0: बांधो। देखो, जैसे भी हो, रोयांगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना होगा।
1: कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
5: जरूर चल सकूंगा।
0: तो फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए,
6: पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाईं ओर नहर के रास्ते से चले जाइए।
0: देखो,
6: ईश्वर इनकी रक्षा करे। जेम्स, अब हमें क्या करना चाहिए?
4: बाबू, दरवाजा जरा देर से खोलना।
6: अच्छा, आता हूं।
7: हिंद,
4: आप लोग
7: जुड़ो, अंदर देखो, ये जल्दी क्विक, कहां है ये सब?
8: तो आप ही जोसेफ पिस्से हैं?
0: जी हाँ सर।
8: ये कौन है? सर, वो लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
0: जी, जेम्स पिस्से।
9: टॉयलेट का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
0: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
8: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो छोकरा आया था कहां गया?
0: यहां तो कोई भी नहीं आया सर।
8: शट अप, झूठा कहीं का। किधर है वो शैतान?
9: नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं है।
0: मैं सच कह रहा हूं सर, यहां कोई नहीं है।
8: मैं भी तो सच ही जानना चाहता हूं। तुम्हारे दोस्त के खून के दागों ने हमें ठीक जगह पर पहुंचा दिया।
9: मिल गया सर।
8: क्या मिल गया?
9: जात पर पट्टी।

0: यही बांधी गई है, ये रही खून में सनी रुई, तभी खून के दाग और पीछे की ओर दिखाई नहीं पड़ रहे।
1: यू आर राइट
0: सर। इसके अलावा इस कमरे में इन दोनों को छोड़कर और भी कम से 5 जने थे। अभी कुछ एक मिनट पहले उन लोगों ने यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां ली है। ये देखिए चाय के 7 कप पड़े जो अभी भी ठंडे नहीं हो पाए हैं।
1: तो मिस्टर जोसेफ पिट्से, अब सर बताइए तो सही, आपने अपने उस मेहमान का कहाँ चालान कर दिया
2: जी?
1: समझ तो रहे हैं, हम सब कुछ जान चुके हैं।
2: नहीं नहीं जी, मतलब हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी,
1: हम लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते सर। मैंने तुमसे नहीं पूछा है, हाँ तो आप कहिए।
2: हाथ में बंदूक लिए एक अनजान आदमी अचानक घुस आया सर, उसने हमें डराकर जख्म पर पट्टी बांधने को मजबूर कर दिया।
1: फिर झूठी कहानी करने लगा।
3: सर ये आप क्या कर रहे हैं, एक बूढ़े आदमी को आप लोग क्या है?
2: सर सर, जेम्स मेरी एकमात्र संतान है, ये आप क्या जानना चाहते हैं?
3: बाबू तुम्हारे मुंह से राज की कोई बात निकलने पर भी ये हमें छोड़ेंगे नहीं।
0: इस ब्लैकी मैं तो खत्म कर डालूंगा।
1: चुनो उसे मेरे पास दो। मिस्टर पिट्से, 1 से 10 गिनने के बीच जो कुछ भी जानते हैं फौरन बता दीजिए, वरना मेरी छोटी सी नली का गरम सीसा जेम्स की खोपड़ी को छेद कर पार हो जाएगा। और
3: बाबू, एक जेम्स के मरने से हजारों हजार जेम्स पैदा होंगे, पर मैं विश्वासघातक का बेटा होकर जीना नहीं चाहूंगा बाबू, कभी नहीं।
1: सोच लीजिए, तो फिर आप अपने खानदान के आखिरी चिराग की मौत की वजह खुद ही बन रहे हैं।
2: ये नहीं।
1: वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
2: नहीं रुकिए
3: बाबू, नहीं बाबू,
1: 7 8 9
0: ठहरिए, हैंड्स अप। सॉरी बेंजामिन,
1: दैट ग्रेट पोएट, आई सी,
0: बिल्कुल नहीं ना, वरना गोली मार दूंगा।
4: बस रहने दीजिए, ज्यादा बहादुरी ना दिखाइए। टेनरी में कच्ची चमड़ी बदन पर लपेट कर पड़ा था और देख रहा था इन दो बेगुनाह इंसानों पर की जाने वाली आप लोगों की ज्यादती की उछल कूद। खैर छोड़ दीजिए इन लोगों को, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं मैं बता रहा हूं आपको।
1: जरूर जरूर, आप ही तो बताएंगे, पर हाँ सीधे साधे शब्दों में कहिएगा, कविता में नहीं। हमें ये सब पसंद नहीं है। अब आपको हमारे साथ सरकारी मेहमान होकर जाना होगा। जुड़ू
0: यस सर,
1: जरा अच्छी तरह से सावधानी के साथ लेकर जाना, इज डेंजरस।
0: यस सर।

0: वायुहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव

0: जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आइए सुनते हैं इस गपशप का तीसरा भाग।
1: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुइस।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं,
1: वो पढ़े लिखे भी नहीं।
0: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?
0: मैं

टेरेंस को गले लगाया। टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अब टेरेस हम वापस आते हैं उस डायस पर, आपके टीवी का जो डायस वहां हाँ। पे आप आपको जब बैठा हुआ देखते हैं हाँ। और जब वहां पे आपको बड़ी शुद्ध हिंदी में बात करते हुए देखते हैं हाँ। तो हमें लगता है कि यार भाई क्या है बात है, टेरेंस ने शायद हिंदी के लिए कुछ अलग से कोचिंग वोचिंग ली है शायद। तो ये हिंदी पे कुछ खास मेहनत की आपने और उसकी वजह?
0: आप चाहे उसे मजाक में ले लीजिए या जब बहुत पैसे मिलते हैं बोलने के लिए तो आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आप उस कुर्सी पर बैठ के कुछ भी नहीं बोल सकते। और मुझे पता है कि अगर मुझे यही मौका मिला अंग्रेजी में बोलने का, अगर मैं उसका विश्लेषण करूं, डांस का विश्लेषण करूं, तो मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं अंग्रेजी में, क्योंकि मैं अंग्रेजी में पला पड़ा हूं, मेरा एजुकेशन ऐसा रहा है। तो जब मैं अपने क्लास में, जब मैं एज ए टीचर, मैं बहुत बारीकी में जाके देखता हूं और मैं बच्चों को बहुत डाइसेक्ट करता हूं, तब मेरी जबान फट फट फट फट करके चलती है और मैं बताऊँ कि ये सही नहीं, ये सही है, ये सही है, ये नहीं है, अब ये करना है, ये यहाँ पे सुधार लेके आना है। लेकिन वही चीज अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मैं अटक जाता हूं कि इसका शब्द क्या है। और मैंने लगा कि यार जो मैं बोलना चाहता हूं मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे। और मुझे ये नहीं बोलना है कि मुझे आपका डांस अच्छा लगा, ये कौन कहता है? तुम जज हो भाई, तुम्हें उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, तुम्हें उसकी टेक्निकल चीजें बतानी पड़ेगी, और वो टेक्निकल चीजें मैं अंग्रेजी में जानता हूं। तो फिर मैंने अपनी हिंदी को सुधारा, फिर बोला कि ये देखते हैं कि क्या है इसका शब्द, अगर मैं ये अंग्रेजी में बोलता, इसको मैं अनुवाद करता हिंदी में, तो उसका अर्थ क्या निकलता। तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा हो, ये मैं बोलना चाहता हूं अंग्रेजी में, तो फिर मैं इसको ट्रांसलेट करता था, अपनी लिखता था, समझता था। क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चा जो हमारा डांस कर रहा है वो इतनी मेहनत कर रहा है और वो अपनी जान लगा रहा है, तुम ऐसे ही है बोल नहीं सकते कि मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, ये अच्छा था, ये नहीं। आपको बताना पड़ेगा ऑडियंस को कि क्या क्या बारीकियां थी, ताकि लोग उसको एक अलग नजर से देखें
1: उस बच्चे को।
0: हाँ, तभी जाके हमारे बच्चों को वो रिस्पेक्ट मिलेगी।
1: जी बिल्कुल सही।
0: हम जज नहीं है, हम मेंटर है। मैंने कभी अपने आप को जज नहीं समझा, मैंने कभी समझा कि मैं मेंटर हूं, मेरा काम है आपको ये बताना कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और जो नहीं अच्छा कर रहे हो कैसे इसको सुधार सकते हो।
1: बिल्कुल सही।
0: उसका उपाय भी देना आपका फर्ज बनता है, अदरवाइज क्या अच्छा बुरा है, क्या गलती निकालना है, तो वो नॉर्मल ऑडियंस भी देख सकती है और बोल सकती है यहाँ पे इसने गलती कर दी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो विश्लेषण आपको करना है एक गाने के बारे में या इसके डांस के बारे में या इसकी टेक्निक या उसकी विधि क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे शब्द, अगर मैं कहूं कि आपके डांस में आप बहुत क्विक हो, ये क्विक क्या है अंग्रेजी में गलत है, वर्ड इज एजाइल। अभी एजाइल को क्या बोलूं? तो बोला कि एजाइल का वर्ड क्या है? चपलता। तो बोला कि आप बहुत चपल हो। तो वैसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है, अब हमारा जो माध्यम है हिंदी माध्यम है, हमारा जो ऑडियंस है, हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी सिटी वाली ऑडियंस नहीं होती। मुंबई दिल्ली वाले देखते नहीं हमारे शो, जो हमारी शो देखते हैं वो बी टाउन या सी टाउन सिटीज से होते हैं, छोटे शहरों से। वहां पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेच, अगर मैं ये बोलूंगा तो कभी कभी समझ में नहीं आएगा, तो बात निकल जाती है, तो उसकी जो अहमियत है वो निकल जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? लचीलापन। तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल करना लगा। और फिर मैंने बोला कि अच्छा ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन हमारे मेंटोरशिप में हमें अगर हमारे बच्चों को ऑडियंस पर लगाव लेके आना, तो टेक्निकल चीजें नहीं होती हैं, उनके निजी जीवन में जो चल रहा है और कैसे उनकी परिस्थिति से वो जूझ कर निकल कर उभर कर आ रहे हैं, वो वाली चीज अगर मैं अपने ऑडियंस के सामने रखता हूं तब जाके ये शो बनेगा, लोगों में इंटरेस्ट आएगा, सिर्फ टेक्निकल चीजों से नहीं। तो मैंने अपनी हिंदी सुधारी ताकि मैं बच्चों के बारे में बोल सकूं अच्छा, ताकि वो लोगों तक पहुंचे, उनका काम लोगों तक पहुंचे। मेरी जिम्मेदारी है इज नॉट टू जज, मेरी जिम्मेदारी है कि जो काम बच्चों ने किया है वो लोगों तक सही मायने में पहुंचाए, और जो नहीं दिखता, क्योंकि डांस ना बड़े बड़े चीजें दिखती है, करतब दिखती है, लेकिन डांस में कहीं छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत सटल होती है, और वो सटल चीजें लोगों को दिखती नहीं है जब तक आप उनको बताओ कि नहीं, आप थोड़ा रिवाइंड करके देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने एक हल्का सा एक अपने अपने एक शरीर के अंग से यहां से खेला है, उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरती है। तो जब मैं बोलता हूं तो लोगों को भी लगता है हाँ ये सही बात है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये सब कहना और वो बयां करना ताकि लोगों को और इंटरेस्ट आए। अगर आप अच्छा बोलते हो तो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है और लोगों का

0: इंटरेस्ट बढ़ता है तो ये मेरे बच्चों के फायदे में रहता है एंड मेरे शो के इंटरेस्ट में रहता है।
1: अब टेरेंस यहाँ पे कुछ इतनी टेक्निकल बातें आपने बताई, इतनी कुछ कठिन गाने,
0: हाँ,
1: जो आपको डांस के माध्यम से लगता है कि गाने बड़े कठिन है, यानी कि हाँ, डांस इसका जो है हाँ, बड़े कठिन रहे हैं, वो कौन कौन से गाने आपके शोज में रहे हैं?
0: लेकिन एक गाना है संजय लीला भंसाली, ये सभी जो गाने होते हैं ना वो कठिन होते हैं। बिकॉज़ एक बेंचमार्क कितना सेट किया ना
1: उनकी, एक फिल्म आपने की हुई है
0: हाँ, रामलीला। तो उनके गाने मुझे बहुत कठिन लगते हैं, जैसे जो ऐश्वर्या जी का हम दिल दे चुके सनम में ओपनिंग सॉन्ग है,
1: अच्छा
0: मनमोहिनी,
1: अच्छा मनमोहिनी,
0: उसके जो अल्फाज चल रहे ना इतने फास्ट है, उनको मैच करना डांस में लाइव स्टेज में, फिल्मों में क्या है कट कट करके कर सकते हो आप, हर एक शब्द को लेके फिल्म कर सकते हो, लेकिन स्टेज पर कैसे हर एक शब्द को वो, और वो इतनी फटाफट बोल रहे हैं, और वो लड़की का मतलब एक औरत क्या होती है, एक लड़की क्या होती है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हीरोइन का डिस्क्रिप्शन है, पहला शॉट है, सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू यू नो कोरियोग्राफ ऑन स्टेज।

0: वो गाना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, लाइक ब्रेथलेस ऑल्सो भी जो गाना है वो बहुत डिफिकल्ट है. और कभी कभी जो ऐसे गाने होते हैं जिनके यू नो म्यूजिक बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वो बहुत वेरिएशंस होते हैं.
1: मसलन
0: जैसे इन्हीं लोगों ने तो मैं चाह रहा था कि इन्हीं लोगों में मैं कथक ना करूं, मैं सोचा कि ये गाने पे मैं जैज करूंगा विदेशी स्टाइल, तो बॉब फॉसी वाला स्टाइल. तो मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि हमारा चैलेंज था कि एक पुराने गाने को लेकर आप नए अंदाज में इसको पेश करोगे, फिरंगी अंदाज में पेश करोगे इसको. तो अभी इन्हीं लोगों ने वो गाना सेट है सब लोगों के दिमाग में, किस तरीके से वो किया गया है उसको अभी जैज बॉब फॉसी हैट टेलकोट वैसा वाला चमकीला वाला कॉस्ट्यूम पहना के वो कराना है, तो जो उसके बीट थे ठक ठक ठक ठक हर एक बीट होता है तो वो पकड़ना पड़ता है. तबला है उसके अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं पकड़े तो फिर वो आपकी कमजोरी है कि आपको समझ नहीं है एज अ कोरियोग्राफर कि वो आपने छोड़ दिया. आप सब कुछ नहीं पकड़ सकते हैं हर बीट को, लेकिन कुछ चीजें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं और अगर आपने नजरअंदाज कर दिया वो एक प्रोमिनेंट बीट को तो ये आपकी कोरियोग्राफिक गलती है. तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप ऐसे गाने को लेते हो जहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही कमाल का हो, एंड देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल.

0: जो आपने बात की कि संजय लीला भंसाली की फिल्म का ये गाना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर आपने संजय लीला भंसाली जैसे डिफिकल्ट म्यूजिक डायरेक्टर की फिल्म भी की है, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैं रामलीला की बात कर रहा हूँ।
1: देखिए मेरा उसमें, मैं सही में कह रहा हूँ कि जब आप दूसरों का पता नहीं लेकिन मैं खुद का जरूर कहूंगा कि जब आप संजय लीला भंसाली सर के साथ काम कर रहे हैं, यू हैव टू रियलाइज कि वो एक कमाल के टेक्नीशियन है और वो खुद एक कोरियोग्राफर है। उनको डांस की जो समझ है ना वो हमसे भी ज्यादा है, सो यू लर्न मोर फ्रॉम हिम। वो बोलेंगे कि आपने ये छोड़ दिया, ये तो है, ही इज दैट गुड, सो दैट इज वन। दूसरी बात ये कि ही इज नॉट जस्ट टेक्निकल, उनका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ और ही लेवल का है। थर्ड लेवल, वो एक ऐसे डायरेक्टर है जो यू कैन प्लीज हिम वेरी इजीली, और उनका बहुत क्लियर विजन है। अगर किसी का विजन क्लियर है तो उनका है। मोस्टली जब गाने शूट होते हैं तो डायरेक्टर रिलैक्स करता है, ले लो कोरियोग्राफर काम करो तुम लोग, और हम 5-6 दिन के लिए लगातार काम करते हैं। डायरेक्टर को भी बोलते हैं आपको ये अच्छा लगा सेट, ये शॉट अच्छा लगा। वो तो कभी कभी कोरियोग्राफी भी दिखते नहीं है, उनको पता है, वो ट्रस्ट भेज जाता है कि हाँ कमाल का ही काम करेंगे। लेकिन संजय लीला भंसाली जी नहीं, उनको हर एक शॉट का डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन चाहिए, फिर वो उस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, फिर वो सुझाव देंगे, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। जो डिस्कशन होती है बिफोर वी इवन टीच द आर्टिस्ट वो 5 दिन

0: की होती है. सो इट इज़ सो डिटेल्ड. मैं बताऊँ रामलीला के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब मैं गया था सेट पे शूट करने के लिए, तब कॉस्ट्यूम ब्लैक वाला था, ब्लैक एंड रेड. हमने दो दिन शूट कर दिया. फिर 2 बजे रात को संजय सर का मैसेज आया, आर यू अवेक? तो मैंने पढ़ लिया, सर हाँ सर मैं, सर ओके कॉल मी. सो मैंने कॉल किया, सर देखिए मुझे गाना मजा नहीं आ रहा. अच्छा तो मुझे डर गया कि मेरा काम पसंद नहीं है, कुछ चेंज करें सर. नहीं नहीं तुम्हारा काम ठीक है, मुझे कॉस्ट्यूम में मजा नहीं आ रहा. दीपिका वो नहीं लग रही है जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरा विजन था वो नहीं आ रहा. तो हम फिर से शूट करेंगे कल. ऐसे कॉस्ट्यूम हालातों रात हो जाएगा, मैं आपको अभी भेजता हूँ, आप बोलो एज अ कोरियोग्राफर क्या ये कॉस्ट्यूम ज़्यादा बेटर लगेगा. तो रातों रात दीपिका की जो कॉस्ट्यूम है वो हम लोग शॉट पे, उसने व्हाइट कपड़ा चढ़ाया है उसी ब्लाउज पर, काले ब्लाउज पर, और उसने मुझे फोटोग्राफ भेजा कि डू यू थिंक व्हाइट विल लुक बेटर, एंड फॉर मी व्हाइट इज माई फेवरेट कलर. आई सेड सर दिस विल लुक फिनोमिनल, बिकॉज ब्लैक में वो थोड़ा यू नो इट इज लुकिंग लाइक राजस्थानी कालबेरिया काइंड ऑफ अ कॉस्ट्यूम, बट ये व्हाइट में एक एक अलग ही एक एक यू नो एक
1: क्रेज. हाँ
0: एंड प्लस सी वो ही थिंग्स मेटाफोरिकली. अच्छा ये सॉन्ग अंग लगा दे इस सुहागरा पला सॉन्ग, वो अभी भी शादी करके आए हैं, दोनों के परिवार ने दोनों के भाइयों को मार डाला है, दोनों शोक मना रहे हैं, और इस माहौल में दीपिका को यू नो रणवीर को रिझाना है और उसको बोलना है कि सब भूल जाओ और हम लोग अपनी दुनिया बनाते हैं. सो इट्स ऑल्सो द सुहागरात वाला सीन, एंड येट इट हैज बी डन वेरी टेस्टफुली. फॉर हिम इट वॉज लाइक नॉट ब्लैक, ब्लैक इज ऑलरेडी सो व्हाइट, इट शुड बी व्हाइट. उनके दिमाग में वो चलने लगा कि विजुअल, सो ही थिंक्स उनके हर सीन में ना एक कलर स्कीम होता है. तो वी शॉट द सॉन्ग ऑल ओवर अगेन, 2 days वापस शूट किया हम लोग ने. तो एक अलग ही लेवल का एक यू नो कमिटमेंट है और डिटेलिंग होता है, और एक इंसान सामने से इतना इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो हमें भी बहुत रुचि होती है कि यार कुछ अच्छा ही बन रहा
1: है. हाँ जहाँ आपकी काम की सराहना भी हो रही है.
0: हाँ.
1: और आपको समझ में आ रहा है कि अगला बंदा भी आपके साथ उतना ही डूब
0: चुका है. तो मजा आता है काम करने का, और हम भूल जाते हैं कि अभी टाइम हो चुका है. कैसे वक्त निकलता है पता नहीं चलता हमें, मुझे पता ही नहीं चला कब.

0: सेकंड में एक और मजे की बात करूंगा, इन्हें एक चलने का शॉट है, वो लेके धूप लगाती है ओके तंबी के सर पे, और फिर चल के वापस आना है और बिस्तर पे लेटना है। तो मैंने दिखाया था कि ऐसे जाके ऐसे बैठना है, तो दीपिका ने समझ लिया, लेकिन उनका जो घाघरा था वो सही रूप में बिस्तर पर नहीं आ रहा था। अब हम दीपिका के चेहरे और एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मैंने वहां पे फोकस ही नहीं की कि घाघरा किस तरीके से बिस्तर पर फैलेगा। उन्होंने एटलीस्ट 10 कट लिए, क्योंकि दीपिका ने सभी एक्सप्रेशन लिया लेकिन वो घाघरा बराबर नहीं आया बेड पे। He's that detailed. फिर वो दूसरा शॉट जो धुनुची है उससे जो धुआं निकलता है वो सीजी में नहीं किया है, वो एक्चुअली धुआं निकला है। तो there was a assistant only for the धुनुची, कि तुम्हें धुनुची, और वो सबसे घबरा हुआ इंसान था, क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि धुनुची अगर वो नहीं है और उसका जो धुआं नहीं निकला तो उसको मार पड़ती थी। तो वो सबसे डरा हुआ इंसान हमारे सेट पे वही वाला था, कि अगर वो धुआं नहीं निकला धुनुची से, क्योंकि वो शॉट था कि वो अपने बालों को धुनुची को अंदर रखती है, वो धूप अपने फेस पे लेती है और वो गा रही है और फेस से फिर वो अपना बालों को सरकाती है, और वहीं से बालों से निकलता हुआ उसको वो धुआं चाहिए था। तो वो शॉट वो भी वो इस तरीके से, ताकि वो जले नहीं, और वो कोयला है और मेकअप
1: भी नहीं, से चिंगारी निकल जाए
0: मेकअप क्रैक भी नहीं होना चाहिए। इट वाज सच अ ट्रिकी शॉट। तो बहुत मुझे वो चाहिए, मुझे वो सीजी करवाना नहीं है, मैं लेके रहूंगा

0: देखिए कितनी बारीक बातें आपने बताई हैं, और हालांकि कोरियोग्राफी सुनने की चीज नहीं, देखने की चीज है, लेकिन आप जिस तरह से समझा रहे हैं, हमारे जितने श्रोता हैं वो शायद इसे देख पा रहे होंगे। बहरहाल अब हम एक खास सवाल आपसे करेंगे। शुरुआत में जब आपसे बातचीत शुरू हुई तो आपने कहा कि, जैसे मैंने कहा था कि अभी बहुत से कई आसमान आपको छूने हैं,
1: हाँ।
0: आपने भी कहा कई मकाम है,
1: हाँ।
0: क्या क्या सोच रखा है आपने?
1: खाना हाथ में और खाना हलक में बहुत फर्क है, तो मैं सोचता हूँ कि कभी किसी को बताऊं मत, क्योंकि फिर आप पे बहुत प्रेशर हो जाता है कि मैंने सबको बताया अभी तो करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वो सहज रूप में हो जाए, जब हो जाएगा तो हम उसको सामने रख देंगे। कोई प्रेशर नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए कि इसने ऐसा बोला था अब क्या हुआ, वो दबाव में नहीं आकर करना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने जो अरमा है वो अपने पास ही रखता हूँ, मैं किसी को शेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अरमा है। मैं चाहता हूँ कि अपने आप पर, अपने काम पर, अपने आप पर भी, अपने व्यक्तित्व पर भी काम करूँ। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत, मेरा पूरा एक लिस्ट है फोन पे, इस पर ये साल 2020 में मेरा कोई लिस्ट, मेरा एक बड़ा लिस्ट था। 2021 में मैं ऑलरेडी मेरा एक लिस्ट बनाया कि किस किस पर मुझे काम करना है, मेरे निजी लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे सोशल लाइफ में किस तरीके से मुझे काम करना है, कैसे मैं अपने आप को उठकर लेके आना हूँ। बहुत सारे चीजें हैं।
0: दो सवाल और हैं।
1: हाँ,
0: एक तो बहुत ही इजी है,
1: हाँ।
0: दूसरा बड़ा कठिन है। इजी सवाल यह है कि एक्टिंग वेक्टिंग करने का इरादा है आपका?
1: हाँ। हाँ, लेकिन वो हीरो वाला नहीं है।
0: नहीं, अब तो खैर आपको कैरेक्टर रोल ही करने
1: पड़ेंगे। मुझे कैरेक्टर रोल ही पसंद है, और मुझे इंटेंस और जो मीनिंगफुल कैरेक्टर्स हैं, जब मैं पंकज त्रिपाठी को देखता हूँ, नवाजुद्दीन को देखता हूँ, या ऐसे कई किरदार हैं जो वो प्ले करते हैं जो हीरो के नहीं है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना बहुत ही सटल परफॉर्मेंस देते हैं, और वो दिल चुरा लेते हैं। मेन वन मुझे ज्यादा पसंद है कि मैं सामने ना रहूं लेकिन साइड में रहकर भी मैं किसी का दिल जीत लूं, वो ज्यादा मुझे पावरफुल लगता है। तो आई फील इट्स नाइस, आई मीन अगर मेन कैरेक्टर मिल जाए तो ग्रेट, नॉट स्पेशली इफ इट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन मुझे ना, मैं भी थोड़ा चूजी हूँ, क्योंकि मुझे अब मेरी फिल्में जो मैं कर रहा हूँ, या मैं एक्टिंग की जो मुझे जो मैं अपने अरमान पूरा करना चाहता हूँ, इट्स नॉट बिकॉज मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, नहीं, मैं फिल्में भी करने के लिए तैयार हूँ अगर रोल इतना अच्छा हो या जो मेरे दिल के करीब हो। और रोल ऐसा क्यों अच्छा लगेगा मुझे, अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट ना हो। मुझे ब्लैक एंड व्हाइट रोल्स मुझे बहुत ही बकवास लगते हैं। मुझे ग्रे कैरेक्टर के जो रोल्स बहुत पसंद है, एक इंसान या एक कैरेक्टर में वो सब अच्छा नहीं हो सकता, उसमें शेड्स होने चाहिए, ग्रे होना चाहिए। वो ग्रे एरिया जो है वो हम दिखाते ही नहीं है। हम पिक्चर को बहुत ही, मोस्ट ऑफ टाइम्स आजकल दौर में एटलीस्ट फिल्में अच्छी बन रही हैं, बट मुझे वो हीरो विलन बहुत बोरिंग लगता है।

0: ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जहाँ पे एक इंसान है लेकिन तुम्हें पसंद भी है, लेकिन उसमें कोई दो तीन चीजें उसकी खोट भी है, बिकॉज दैट इज नेचुरल, एवरीवन हैज लाइक दिस,
1: खोट तो होती है.
0: एग्जैक्टली. तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है ना, जो जनरली फिल्म मेकर्स में कि एक एक हीरो अच्छा है और ये विलन है, मुझे बहुत ही बकवास लगती है. एंड आई डोंट लाइक दोज रोल्स बिकॉज देयर इज नो चैलेंज एंड देयर इज नोबडी लाइक दैट. इट्स अनरियल, इट्स अ फेरी टेल. तो अगर रियलिस्टिक, अगर ऐसे फिल्में बनती हैं एंड रियलिस्टिक रोल्स, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं आज की तारीख में, जैसे अनुराग बासु या अनुराग कश्यप जी जो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं. जोया अख्तर ने बहुत अच्छी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो मुझे बहुत पसंद आई. बहुत सारे अच्छे मीनिंगफुल डायरेक्टर्स हैं, जैसे मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं असगर फरीदी जो ईरान के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक फिल्म सेपरेशन और एक सेल्समैन बनाई है. अगर उनकी पिक्चर जब मैं देखता हूँ तो मैं मतलब बोलता हूँ कि ये क्या एक्टिंग है भाई, इतनी नेचुरल, इतने सहज रूप में, लगता ही नहीं कि इनको पता भी है कि कैमरा लगा था. वो वाला एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो सटल रूप में कि आप इतने इतने इतने खो जाओ वो सीन में कि जो दूसरा सामने वाला जो देख रहा है इसको पता भी नहीं कि कैमरा चल रहा है, ये तो ऐसे ही निकल गया. वो वाली फीलिंग आनी चाहिए. इट शुड नॉट फील कि अच्छा ये एक्ट कर रहा है. तो वो एक अलग लेवल का.
1: अब एक बड़ा कठिन सा सवाल है.
0: हाँ.
1: सवाल ये है, ऐसा है कि जो जो मैं पूछना चाहता हूँ उसमें जो आदमी एक्टिंग नहीं भी करता उसको भी एक्टिंग करनी पड़ जाती है फिर इस मोमेंट के बाद.
0: अच्छा.
1: और वो है कि शादी के बारे में.
0: देखिए मेरी जो विचारधारा है वो बहुत ही अलग है. मैंने कहा है कि मेरे लाइफ में, हमारे फैमिली में सभी मेरे सातों भाई बहन ने शादी कर ली, उनके बच्चे हैं. लेकिन मेरी माँ को अगर एक एक तो चाहिए ना जो संतान जो एकदम अलग करे, तो वो मैं हूँ. और ऑल्सो माई सेल्फ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, क्योंकि मेरी जो विचारधारा है कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ जल्दी किसी के साथ, के किसी इंसान के साथ भी और किसी चीज के साथ भी. मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, और मैं किसी एक के साथ नहीं जुड़ा रख सकता. सो आई नो कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ. तो अगर ऐसा इंसान हो तो फिर वो किसी के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे के जीवन नष्ट कर सकता है. मैं रिलेशनशिप में रहा हूँ और मैंने देखा है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ. मैं ये पहले क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि मैं फिगर ही नहीं करता. मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अपनी मंजिलें पर ज़्यादा अमल करना चाहता हूँ. और मुझे इट्स नॉट कि मुझे कोई किसी का साथ चाहिए. मैं अपने आप खुद, मैंने पूरी लाइफ खुद ब खुद जी है, की है. तो मुझे कोई लगता नहीं कि मुझे किसी की इमोशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इमोशनली मैंने अपने आप को संभाला है बचपन से.

0: अब एक और बात है
1: हाँ।
0: कि आपने अब ये तो तय कर लिया, बता दिया कि हाँ। ये नहीं करना है,
1: नहीं करना है,
0: लेकिन आपके अंदर जो कला है
1: हाँ,
0: देखिए कला बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे आपकी अलमारी में रखा हुआ आपका धन,
1: करेक्ट,
0: जिस तरह से अलमारी में रखा हुआ धन बाप अपने बेटे को दे के जाता है हाँ। उसी तरह से अपने अंदर की कला विरासत में अपने बच्चों को दे के जाता है
1: हाँ।
0: तो आप अपनी विरासत किसको देंगे?
1: एक एक जो आप कह रहे लोग बहुत कहते हैं हाँ ये जो आपके गुण है वो आ जाएंगे, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे बाप में क्या डांस का गुण था जो मेरे में आ गया
0: हाँ।
1: कुछ नहीं था ना, मुझे विरासत में डांस तो मिला ही नहीं, लेकिन एक लगाव आ गया। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आप किसी को भी आप अपना मानते हो, और मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, बच्चों जो मेरे साथ सीखते हैं उनको मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन चीजें जो मैंने सीखा है समझा है दे दिया है उनको। जो मेरी विरासत है वो वैसे भी मेरी नहीं है, मुझे सौगात में मिली थी, मुझे आशीर्वाद के रूप में मिला था, तो मैं अपने पास नहीं रख सकता उसको। मेरा फर्ज है कि मैं जो मुझे मिला है, जिसकी वजह से मुझे धन संपत्ति और शौहरत मिली है, मैं उसको बांटूं, क्योंकि ये करेंसी है, ये चलनी चाहिए, ये लक्ष्मी है, ये दुर्गा है, ये सरस्वती है, ये एक के पास नहीं देनी चाहिए, ये जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना आते जाएगा, इट्स अ कंटिन्यूअस फ्लो। तो मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, और बहुत लोग जैसे शक्ति हो, पुनीत हो, बहुत बड़े बड़े, ये तो फिर भी जाने माने लोग हैं जो पर्दों में दिखाई देते हैं, बट बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, जिन्होंने मुझसे सीखा है और जो आगे लेके जा रहे हैं, और अगर वो उसकी उसकी बात कर रहे हैं तो उसकी कोई कमी नहीं है। मैं किसी को भी अपना मना सकता हूं और उसको बता सकता हूं, अगर उसको इंटरेस्ट है या उसको सीखना है, मैं अपने पास सकना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं तो, हम क्या है, हम तो आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा काम है या जो हमने दिया है, जो हमने समझा है, वही हमें बांटना है। हम एक खुशबू की तरह आए हैं और खुशबू की तरह चले जाएंगे।

0: आप खुशबू की तरह तो अभी नहीं जाने देंगे हम आपको, एक सुरीली खुशबू जरूर हम चाहता हूँ कि आप फैलाएं। यहाँ पे क्या लगता है आपको कि ये जो इतनी लंबी बातचीत जो हुई, आपने जिंदगी की बहुत सी बातें आपने आज विविध भारती के श्रोताओं के साथ बांटी हैं, पहले तो ये बताइए कैसा लगा आपको?
1: बहुत ही अच्छा। जिस तरीके से आपने माहौल पैदा किया है, जो कंफर्ट लेवल आपने पैदा किया कि मैं भी खुल गया, मैं बहुत सारी चीजें शेयर कर पाया। कभी कभी बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी आप फील करते हैं कि नहीं, आप अगर जो आपका सत्य है, अगर आप प्रेम से बात करें और जो सामने वाला भी है जो आपको कंफर्ट महसूस कराए, तो आपको मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल करवाया। और जो सवाल जो आपने पूछे वो बहुत ही कुछ निजी थे, कुछ प्रोफेशनल थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा और जिस तरीके से आपने उसको गाइड किया बहुत मजा आया। और ऑल्सो मैं बहुत ओवरवेल्म हो चुका हूँ बिकॉज विविध भारती ये शब्द मुझे बचपन से जुड़ा है, बिकॉज हम सिर्फ रेडियो सुनते थे। आजकल के बच्चे शायद ये बहुत कम सुनने में आया कि विविध भारती, जो मिलेनियल्स बोलते हैं ना हम, उनको क्या है विविध भारती क्या है, लेकिन हमें पता है कि इसकी अहमियत क्या है बिकॉज हम ये सुनते आ रहे हैं। तो फॉर मी व्हेन जब आपका कॉल भी आया ना, तो मैंने इमीडिएटली बोला हाँ मुझे जाना है क्योंकि इतनी ये जो आपकी जो विरासत है, जो ये जो आपकी जो परंपरा है जो चली आ रही है 1957 से, एक अलग ही परंपरा है और इसके साथ जुड़ना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
0: सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन यहाँ एक मैं चाहता हूँ, वो एक सुरीली खुशबू की जो मैं बात कर रहा था, आपको क्या लगता है यहाँ कौन सा गाना हमें सुनना चाहिए?
1: कौन सा गाना जो एकदम लोगों को खुश कर देना? है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस प्यार

0: इस गाने में एक लाइन थी, न जाने किस पे आएगा।
1: करेक्ट।
0: आपका दिल तो अब छोड़ देते हैं,
1: बहुत लोगों पे आया और अपनी जगह पे आया है और चला गया अभी,
0: और फिर वापस अपनी जगह पे आ गया,
1: आ गया। हाँ।
0: लेकिन एक खास बात है, हमारे जितने सुनने वाले हैं सबका दिल आप पर आ गया।
1: अरे क्या बात है।
0: और फिलहाल तो मेरा मन तो नहीं हो रहा, इतनी लंबी बातचीत के बाद भी लगता है बैठ के बात करते रहे आपसे। हाँ। लेकिन आज के लिए हम अपनी बातचीत को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर एक बार एक किसी और आसमान पर जब आप पहुंच जाएंगे।
1: हाँ।
0: तब हम आपसे फिर एक और मुलाकात करेंगे।
1: जरूर जरूर।
0: और आज तमाम सुनने वालों की तरफ से मैं अमरकांत आपसे विदा लेता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहता हूं। और ये हमारी बहुत खुशनसीबी रही कि आपने न सिर्फ टाइम दिया बल्कि इतने इत्मीनान से इतनी सारी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अमरकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया ताकि मैं दिल खोल के बात करूं, तो शुक्रिया। क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही एंडियरिंग है, जब प्यार सामने से आता है तो एक इंसान भी खुल जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर द लव। और सभी सभी जो सुनने वाले हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं, आप ज़रूर ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, और आपका प्यार आपका आशीर्वाद मेरे सर पे सर रहा। तो बहुत सारे जो मकाम हैं ज़िंदगी में मैं ज़रूर हासिल करना चाहूँगा आपके आशीर्वाद से।

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 5 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। इससे पहले मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने ओडिशा की प्रगति की सराहना की। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय भागीदारी के रूप में उभर रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण को दोहराया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री इस समय पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। उन्होंने महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित किया। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक शामिल है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 43वें ओवर में 9 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। श्रृंखला में भारत

0: 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। पेश है ये गीत रंग दे बसंती फिल्म से, और इस गीत को आवाज अदा की है दलेर मेहंदी और चित्रानी।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: नूरा सिस्टर्स की आवाज में आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म दंगल से।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आज हम द ग्रेट माइग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आप शायद कुछ पक्षी या पंछी के बारे में सोच रहे होंगे। जी नहीं दोस्तों, मैं तो इंसानों की बात कर रहा हूं। सीमाओं के पार प्रतिदिन आने जाने वाले लोग के प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। हालांकि कुछ श्रेणियों के लिए यानी शरणार्थी, आर्थिक प्रवासी के लिए गतिशीलता को और अधिक कठिन बनाया जा रहा है। वैश्विक प्रवास के नए पैटर्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन वैश्वीकरण से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। एक और वैश्वीकरण की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को बढ़ावा देती है, जिसमें विकास, जनसंख्या और लोकतंत्र के इम्बैलेंसेस शामिल है। वैश्विक नौकरी

का संकट, वैश्विक श्रम बाजारों का विभाजन, संचार और परिवहन में क्रांतियां और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक नेटवर्क। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन स्वयं वैश्वीकरण की प्रक्रिया को जन्म देता है, जिसमें धन और वस्तु का वैश्विक स्थानांतरण, वैश्विक शहरों का उदय तथा बढ़ती सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता शामिल है। हालांकि व्यापार और पूंजी की तुलना में श्रम की वैश्विक आवाजाही प्रतिबंधित बिना हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन उन मुद्दों के मूल में है जो इनके लिए जरूरी है, जिसमें राष्ट्रीय पहचान, आर्थिक प्रतिस्पर्धता और सुरक्षा शामिल है। इसीलिए विरोधाभास ये है कि जबकि अधिकांश औद्योगिक देशों के श्रम बाजार की कमी को पूरा करने और जनसंख्या के रुझाने को संबोधित करने के लिए अधिक प्रवासियों की आवश्यकता होती है, फिर भी अधिकांश राजनीतिक और लोक लुभावन दबावों के जवाब में प्रवासन को प्रतिबंधित कर रहे हैं। हालांकि व्यापार और पूंजी की तुलना में श्रम की वैश्विक आवाजाही प्रतिबंधित बनी हुई है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को वैश्वीकरण की कोयला खदान में एक कैनरी बर्ड माना जा सकता है, या तो ये तब फलेगा फूलेगा जब वैश्वीकरण की ताकतें राष्ट्रवाद पर काबू पा लेंगी, या इसकी कमी इस बात का संकेत हो सकता है कि वैश्वीकरण चरम पर पहुंच चुकी है और पीछे हट रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2015 में 244 मिलियन लोग एक वर्ष से अधिक समय तक अपने देश से बाहर रहे, और निश्चित रूप से वे लोग जो अपने देश के अंदर ही बाहर जाते हैं। इस कुल में लगभग 20 मिलियन शरणार्थी शामिल हैं। एक तरफ अपने देश में मजबूर लोगों की ऐतिहासिक उच्च संख्या, दूसरी तरफ प्रवास की कुल संख्या का अभी भी अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा। प्रवास और उसके प्रभाव के बारे में अब जानेंगे मेरे दोस्तों आज के लम्हे कार्यक्रम में चेतन के साथ। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla, spice.lamhe.vanilla। प्रवासन एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग रहने और काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नौकरी, आश्रय या किसी अन्य कारण से लोगों का अपने घर से दूसरे शहर, राज्य या देश में जाना प्रवास कहलाता है। भारत में पिछले कुछ वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर प्रवास बढ़ा है। प्रवास के कारण आजकल कई लोग बेहतर जीवन जीने लगे हैं। रोजगार के अवसर सबसे आम कारण है जिसके कारण लोग पलायन करते हैं। इसके अलावा अवसरों की कमी, बेहतर शिक्षा, बांधों का निर्माण, वैश्वीकरण, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या सूखा, फैमिन और ड्रॉट, और कभी कभी फसल की विफलता ने ग्रामीणों को शहर की ओर माइग्रेट करने के लिए मजबूर किया। जो लोग काम या आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उन्हें प्रवासी कहा जाता है। ज्यादातर बार प्रवासी लोग कुशल या शिक्षित नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें आमतौर पर मजदूर यानी श्रमिक, जिन्हें उनकी सेवाओं के लिए प्रत्येक दिन के अंत में भुगतान किया जाता है। ऐसे मजदूरों को अपने परिवार के जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है और वे कई समस्याओं से पीड़ित होते हैं, जैसे कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन, स्वच्छता, रहने के लिए उचित स्थान आदि नहीं है। शहरी जीवन के लिए प्रवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बनता है। बड़े शहरों के कई अवसर और आकर्षण बड़ी संख्या में लोगों को बड़े शहरों की ओर खींचते हैं। प्रवास का प्रवासियों के जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव हो सकता है। बेरोजगारी कम होती है और लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर मिलते हैं। प्रवासन लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करता है। इसे लोगों के सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि वे नई संस्कृति, रीति रिवाज और भाषाओं के बारे में सीखते हैं।
जो लोगों के बीच भाईचारा को बेहतर

0: बनाने में मदद करता है।
1: कुशल श्रमिकों के प्रवास से क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में वृद्धि होती है। बच्चों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। जनसंख्या घनत्व कम हो जाता है और जनदर घट जाती है। दोस्तों, ये थे सकारात्मक प्रभाव। अब कुछ नकारात्मक प्रभाव को भी देखेंगे हम आज के लम्हे प्रोग्राम में। ग्रामीण क्षेत्रों से एक व्यक्ति की हानि, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादन और विकास के स्तर पर प्रभाव। शहरी क्षेत्र में श्रमिकों के आने से नौकरी, मकान, स्कूल सुविधाएं आदि के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। बड़ी जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। शहरी इलाकों में ग्रामीण के लिए जीवन रहना मुश्किल है, क्योंकि शहरी इलाकों में प्राकृतिक वातावरण और शुद्ध हवा नहीं है। इन्हें हर चीज के लिए भुगतान करना पड़ता है। प्रवासन से किसी स्थान की जनसंख्या में परिवर्तन होता है, इसीलिए भारत में जनसंख्या का वितरण असामान्य है। कई प्रवासी पूरी तरह से निरक्षर और अशिक्षित है, इसीलिए वे न केवल अधिकांश नौकरियों के लिए अयोग्य है, बल्कि उनमें बुनियादी ज्ञान और जीवन कौशल का भी अभाव है। गरीबी के कारण वे सामान्य और स्वस्थ जीवन जीने में असमर्थ है। गरीबी में पले बड़े बच्चे को उचित पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच नहीं होती। प्रवास के कारण शहरों में झुग्गी झोपड़ियां बढ़ गई है, जिससे अस्वच्छता, प्रदूषण आदि जैसे अनेक समस्याएं बढ़ गई है। कभी कभी प्रवासियों का शोषण किया जाता है। प्रवासन एकल परिवार की वृद्धि का एक मुख्य कारण है, जहां बच्चे व्यापक पारिवारिक दायरे के बिना बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये था माइग्रेशन के बारे में आज के लम्हे प्रोग्राम में। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपने होस्ट, दोस्त और आरजे चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: अभी आपने सुना स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे FM 107.2 MHz पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। पेश है प्रोग्राम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
1: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
2: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, अपने लिए तो हम सब जीते हैं, मजा उसी जिंदगी का है जो दूसरों के भी काम आए। आज सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में एक ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने सपनों की परवाह ना करते हुए अनाथ, बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया, उनके लिए आशा की किरण बने। रद्दी से शिक्षा जैसा इन्होंने अभियान चलाया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। हम बात कर रहे हैं समाज सेवक, द बुक मैन ऑफ चंडीगढ़ और ओपन आईज फाउंडेशन के संस्थापक श्री संदीप कुमार जी की। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में।
3: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, जन्म आपका कहाँ पे हुआ और आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ पे हुई?
3: मेरा जन्म हरियाणा के भिवानी जिले की तहसील तोसाम में, गाँव ढाणीमऊ में हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे हुई। उसके बाद मेरी उच्च शिक्षा चंडीगढ़ से हुई और मेरे पिताजी एक फार्मर हैं, मैंने गांव से ही अपनी शिक्षा पूरी की है।
2: जी, क्योंकि आप एक समाज सेवक हैं तो समाज सेवा का ये जो सफर है आपका, वो कब शुरू हुआ, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली?
3: मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सामाजिक क्षेत्र में आऊंगा। तो 2016 में मैंने कोर्स किया JBT, जो प्राइमरी

टीचर का कोर्स होता है और कोर्स होने के बाद मेरी जो ट्रेनिंग है इंटर्नशिप हरियाणा के एक गांव डाडम में लगी। तो जब मैं डाडम में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो वहां जाके मैंने देखा कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बच्चे रोज स्कूल आ रहे हैं। मैंने उनको काम दिया क्योंकि मेरे अंदर जोश था, मुझे लगता था कि मैं बच्चों को कुछ ज्यादा अच्छा ही पढ़ाऊंगा। तो मैं ये हर रोज ये देखने लगा कि मैं बच्चों को काम देता लेकिन बच्चे अपने काम करके लेके नहीं आते या बीच में छुट्टियां मारते, तो ये हर रोज का काम होने लगा। तो जब मैंने बच्चों से पूछा भाई आप इतनी छुट्टियां क्यों मारते हैं, तो उनमें से कुछ बच्चों ने कहा कि मेरे पास नोटबुक नहीं है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगा कि दो चार बच्चों ने नोटबुक मांगी और मैंने मार्केट में गया और मैंने दो चार बच्चों को नोटबुक खरीद के दी। अगले दो चार दिन में फिर क्या है कि सारी क्लास मेरे पास आने लगी। धीरे धीरे ये बात पूरे स्कूल में फैलने लगी कि भाई एक टीचर है वो नोटबुक पेन पेंसिल देते हैं। तो सारस आठवीं तक का स्कूल था वो, तो बच्चे मेरे पास आने लगे। मुझे लगा भी ये तो बहुत बड़ी समस्या है, अब इतने बच्चों को तो मैं दे नहीं सकता, बट ये सारे बच्चे मेरे से ही नोटबुक क्यों ले रहे हैं, जबकि सर्व शिक्षा अभियान में आठवीं तक की शिक्षा फ्री है, सरकार सारी फैसिलिटी देती है। तो मैं अपने हेड सर के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि सर आप इन बच्चों को नोटबुक नहीं देते हैं,

0: एक टीचर है वो नोटबुक पेन पेंसिल देते हैं, तो सारे 8वीं तक का स्कूल था वो, तो बच्चे मेरे पास आने लगे। मुझे लगा भी ये तो बहुत बड़ी समस्या है, अब इतने बच्चों को तो मैं दे नहीं सकता, बट ये सारे बच्चे मेरे से ही नोटबुक क्यों ले रहे हैं, जबकि सर्व शिक्षा अभियान में 8वीं तक की शिक्षा फ्री है, सरकार सारी फैसिलिटी देती है। तो मैं अपने हेड सर के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि सर आप इन बच्चों को नोटबुक नहीं देते हैं, सरकार तो देती है। तो उन्होंने कहा भाई ये हमारे पास नहीं आती है नोटबुक, इनकी नोटबुक का जो स्टेशनरी का जो पैसा है इनके पेरेंट्स के खाते में जाता है और वो इनको दिलाते नहीं है। तो फिर मैं उन बच्चों के पेरेंट्स के घर गया और जाके मैंने देखा कि पेरेंट्स से बात करूं कि बच्चे तो पढ़ने वाले हैं, आगे तभी बढ़ेंगे ना जब इन बच्चों को ये सामान मिलेगा। तो जब मैं उनके फैमिली के पास गया तो मैंने देखा कि मेरे से ये सवाल हुआ ही नहीं वहां जाके, क्योंकि जब उनके घर के हालत देखे तो मैंने देखा कि जिस घर में खाने के दो वक्त का खाना नहीं है तो वो पेरेंट्स शिक्षा का सामान कैसे दिला सकते हैं। अगर सरकार ने 1000 रुपए उनके खाते में डाले हैं तो पहले तो वो राशन खरीदेंगे, फिर वो एजुकेशन के बारे में सोचेंगे
1: जी।
0: तो फिर मैं वापिस आया और फिर यही बात मेरे अंदर से जहन में आई कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गैप है। तो ये एक सामाजिक सेवा में जाने का ये एक मेरा फर्स्ट कारण था कि मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन उसके बाद मेरी फैमिली चंडीगढ़ शिफ्ट हो चुकी थी तो मैं वापिस चंडीगढ़ आया और चंडीगढ़ आके मेरे दिमाग में वही सवाल चला, क्या जो बच्चे गांव में थे ऐसे बच्चे यहाँ पे भी हैं
1: जी।
0: फिर मैंने पूरे चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला ट्राई सिटी हैं, तो इन तीन शहरों में मैंने घूमा और मैंने देखा कि यहाँ के हालत वहाँ से ज्यादा बदतर हैं। तो मैंने जब ये पता किया कि यहाँ पे भी जरूरत है तो मैंने अपनी फैमिली को कहा कि मैं इस चीज के ऊपर काम करना चाहता हूँ, जबकि उनका विरोध हुआ इस बात को लेके। लेकिन मुझे ये लगा कि इतने सारे बच्चे हैं और इतने सारे बच्चों के लिए जो सामान आएगा ये आएगा कहाँ से, तो ये एक बड़ा सवाल था क्योंकि इनमें तो पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, अब इतना पैसा मैं कहाँ से लेके आऊंगा जबकि मैं तो खुद ही स्टूडेंट हूँ। तो फिर मैंने अपनी फैमिली को बताया तो मेरी फैमिली वालों ने कहा कि ये काम नहीं करना, आप पढ़े हो लिखे हो, अपना भविष्य के बारे में सोचो, आप कहाँ इन चीजों में फंस रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने अपने जीवन में यही करना है
1: जी। अगर ओपन आईज फाउंडेशन की बात करें तो किस तरह से शुरुआत हुई, आइडिया कहाँ से आया?
0: यही जैसे मेरे मन में एक ख्याल तो आया कि मैंने इसके ऊपर काम करना है, फैमिली वालों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैंने मोटिवेशनल चीजें सुननी शुरू की। तो वहां से एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने कहा कि जो समस्या है उस समस्या को लिखो और फिर ये देखो कि मुझे इसका समाधान चाहिए। तो मैंने इस समस्या को लिखा कि शिक्षा का बेसिक रिसोर्स नहीं है, मुझे इसका समाधान चाहिए। तो जब मैंने इसको लिखा मैंने 20-25 डायरियां भरी हैं। फिर एक दिन अचानक से मेरा पेन खत्म हो जाता है, फिर मैं अपने घर वालों को कहता हूँ मुझे पेन चाहिए, घर वाले कहते हैं आप तो पागल हो चुके हो, एक ही चीज को बार बार लिख रहे हो। तो मैंने हड़बड़ाहट में पुरानी चीजें देखी, पुरानी चीजों में मुझे एक पेन मिलता है उसमें रिफिल नहीं होती है, तो मैं उस पेन को खोलता हूँ उसकी रिफिल देखता हूँ। उसी क्षण मेरे दिमाग में ख्याल आता है ये जो पेन है ये मार्केट से मैं 10 रुपए का लेके आया हूँ और इसमें खत्म हुई है सिर्फ 1.5 या 2 रुपए की रिफिल, अगर ये 1.5 या 2 रुपए की रिफिल इसमें डाल दी जाए तो 10 रुपए का पेन तैयार हो जाता है। तो एक ख्याल आया, फिर ऐसे ही किताबों का ख्याल आया, ऐसे ही स्टेशनरी का ख्याल आया। तो वहां से लगा कि मेरे घर की जो रद्दी है इसको मैं शिक्षा का जरिया बनाऊंगा और वहां से पढ़ा कि ओपन आईज फाउंडेशन बना के इस फील्ड में काम करना चाहिए
1: जी। संदीप जी, क्योंकि जब हम लीक से हटकर कोई काम करते हैं तो शुरुआत में हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ?
0: देखो देश दुनिया में जितनी भी चुनौतियां होती है आदमी पार कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती घर वाले होते हैं। तो मेरे इस काम में मेरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मेरे घर वाले थे, उन्होंने मेरा साथ बिल्कुल नहीं दिया जब मैंने काम शुरू किया और मुझे 5 महीने बाद अपना घर छोड़ना पड़ा और मैं 5 साल तक अपने घर नहीं गया। उनका यही मानना था कि हमें अपने जीवन के बारे में आगे बढ़ना चाहिए, अपने जीवन को बेहतर करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, बच्चे करने चाहिए, इस तरह का जीवन जीना चाहिए, यह है घर का स्ट्रगल। उसके बाद क्या है कि जब आप समाज में जाते हो तो आपके दोस्त मिलते हैं, आपके रिश्तेदार मिलते हैं, और काम मैंने ऐसा चुना कि मैं पुरानी किताबों को इकट्ठा करूंगा, स्टेशनरी के सामान को इकट्ठा करूंगा, यानी मैं रद्दी का काम शुरू करूंगा। तो मैं जब भी ये काम करने जाता तो कभी कोई जानकार मिलता, कभी कोई मिलता, तो सब यही कहते कि आपका जो बच्चा है घर वालों को भी ये तो रद्दी वाला है, रद्दी वाला काम शुरू किया है। तो समस्याएं तो हर पल पे खड़ी हैं, आप 22-23 साल के हैं और आपको कोई रद्दी वाला कह रहा है, जबकि आपके अंदर एक जुनून है कि उन सारी किताबों को इकट्ठा करके उन बच्चों को देना है। दूसरा आपका संघर्ष है, आप उन्हें घर छोड़ दिया, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप सरवाइव कैसे करोगे? तो उसके लिए फिर पार्ट टाइम जॉब शुरू की ताकि जॉब भी शुरू की जा सके और जो है लोगों की सेवा भी की जा सके
1: जी। तो आपने जो रद्दी से शिक्षा अभियान शुरू किया, इसका आइडिया आपको कहां से आया और किस तरह से इस अभियान की आपने शुरुआत की?
0: रद्दी से मेरी शिक्षा आइडिया वहीं आया कि जब मेरा पेन खत्म हुआ और मैंने दोबारा जब रिफिल डालनी शुरू की, उसी तरीके से जब नोटबुक के मैंने देखा कि खाली के 4-5 पेज खाली हैं नोटबुक के, तो खाली पेज निकाल के नई नोटबुक बनाई, फिर सोचा कि मेरी

0: खराब है उसको मैं दूसरे बच्चों तक भी तो पहुंचा सकता हूं। तो फिर मुझे लगा मेरे घर में तो ये रद्दी थी
1: जी,
0: साइड में रखी हुई थी, रद्दी थी, आज नहीं तो दो दिन बाद ये बिकती, लेकिन मैंने इसको शिक्षा का जरिया बनाया, तो आइडिया यहां से आया, रद्दी से शिक्षा।
1: जी संदीप जी, आपको कब महसूस हुआ कि आपका ये जो अभियान है रद्दी से शिक्षा वो सफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है?
0: पहले मैं पैदल पैदल किताबें इकट्ठी करता था, एक दो कोई साथ जुड़ जाता था तो कोई किसी दोस्त की एक्टिवा ले ली, किसी की साइकिल ले ली, तो उससे मैंने किताबें इकट्ठी करी। उसके बाद मैंने 12,000 रुपए का सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा और उससे जब मैंने लोगों के घरों से किताबें इकट्ठी करनी शुरू की तो 6-8 महीने के बाद लगभग 2018 में एक बड़े अखबार में मेरा प्रकाशित हुई। तो उसके बाद इंग्लिश अखबार था तो लोगों ने मुझे बहुत फोन कॉल्स करने शुरू किए। उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री थे उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे वो पोस्ट को शेयर किया। तो उसके बाद मुझे ये लगा कि हाँ भाई, जब आपको कोई नहीं जानता, आपके घर वाले भी नहीं जानते और आपको एक मुख्यमंत्री है वो आपकी पोस्ट को शेयर कर रहा है, आपकी पहुंच नहीं है वहां तक, इसका मतलब है लोग आप पे विश्वास करने लगे हैं और इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए।
1: क्योंकि आप द बुक मैन ऑफ चंडीगढ़ के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इस नाम की शुरुआत कैसे हुई, कहां से आपको ये नाम मिला?
0: द बुक मैन ऑफ चंडीगढ़ का टाइटल इसलिए पड़ा कि जब मैंने अपने स्कूटर से मैंने किताबें इकट्ठी करनी शुरू की तो वो जो फोटो है बड़ी वायरल हुई, तो वायरल ऐसी हुई कि हर अखबार ने उसको कवर किया, तो उसके बाद जो टाइटल है द बुक मैन ऑफ चंडीगढ़ वहां से पड़ा। देखिए, जब आप किताबें इकट्ठी करते हैं तो आप लोगों के घरों में जाते हैं तो तमाम तरह के लोग आपको देखते हैं, फिर जब आप सुर्खियों में आ जाते हैं तो न्यूज़पेपर वाले आपको कवर करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो बातचीत के दौरान उन्होंने इस नाम का यूज किया कि किताबें इकट्ठी करते हैं तो उनको द बुक मैन ऑफ चंडीगढ़ का टाइटल दिया जाए। तो धीरे धीरे वो हर रोज जब भी अखबार आता तो उसमें वो टाइटल लिखा होता कि द बुक मैन ऑफ चंडीगढ़ लोगों के घरों में जाते हैं, पुरानी किताबें इकट्ठी करते हैं और बच्चों तक पहुंचाते हैं, तो इस तरीके से ये चीज चली।
1: अगर किताबों की बात करें तो अब तक कितने बच्चों को आप कितनी किताबें बांट चुके हैं?
0: अब तक हम लगभग 3 लाख से ज्यादा किताबें हम बांट चुके हैं, लगभग हम 4-4.5 लाख किताबें इकट्ठी की हैं हमने, उनमें से 3 लाख किताबें हम लगभग 50,000 से ज्यादा बच्चों को बांट चुके हैं।
1: संदीप जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, यहां पर हम आपकी पसंद का एक गीत आपको और सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: गीत की बात है तो जिंदगी कुछ तो बता, ये मैं सुनना चाहूंगा और अपने श्रोताओं को भी सुनाना चाहूंगा।
1: जी, बहुत ही अच्छा गाना है, आइए सुनते हैं।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं समाज सेवक द बुकमैन ऑफ चंडीगढ़ और ओपन आईज फाउंडेशन के संस्थापक श्री संदीप कुमार। संदीप जी, आपने लीक से हटकर बहुत सी नई चीजें की। लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी या ईमानदारी की लाइब्रेरी क्या है और किस तरह से आपने इसे शुरू किया?
1: लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी के नाम में ही

0: इसकी खूबसूरती है ऑनेस्टी, यानी जब लोग हमें किताबें डोनेट करते हैं तो वो हम पे विश्वास करते हैं, हम पे बिलीव करते हैं कि हम वो किताबें हैं जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना, बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन की किताबें होती हैं जो जरूरतमंद बच्चे नहीं पढ़ पाते उनको, और बच्चे की नॉलेज से बड़ी किताबें वो होती हैं। तो हमने वॉकिंग डिस्टेंस पे, जैसे आप चंडीगढ़ में जाएंगे सेक्टर 34 में जाएंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी में जाएंगे सेक्टर 15 में जाएंगे, पंचकुला में जाएंगे, तो हमने छोटी छोटी मिनी लाइब्रेरी बनाई है जिसमें 80 से 100 किताबें होती हैं। आप वॉक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अचानक आपकी नजर एक लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी पे पड़ी, आप देख रहे हैं इसमें कोई लोग भी नहीं है, और वहां से ये लिखा हुआ है कि आप अपनी कोई भी मनपसंद किताब उठाएं और घर ले जाएं, पढ़ने के बाद इसे वापस करें। तो इससे क्या है कि लोगों में रीडिंग हैबिट बढ़ती है, लोगों में विश्वास बढ़ता है, लोगों तक ये बात पहुंचती है कि हम भी अपनी किताबें डोनेट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।
1: जी, और इसी तरह से अगर मोबाइल लाइब्रेरी की बात करें तो उसकी शुरुआत कैसे हुई?
0: 2020 में जब कोरोना आया तो कोरोना में देखा कि बहुत सारी चीजें बंद हो चुकी थी कोरोना में, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी थी, तो गवर्नमेंट ने एक अपना गाइडलाइन जारी की कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आप स्कूटर पे दो लोग एक साथ नहीं बैठ सकते। तो इस दौरान हमने देखा कि हमने बच्चों तक तो किताबें पहुंचानी है, तो वो कैसे पहुंचाई? तो उसी दौरान हमने एक लाइब्रेरी बनाई कि हम बच्चों के घर तक पहुंचेंगे, उनके घर तक जाकर वो सामान देंगे। हम शिक्षा का जो बेसिक रिसोर्स है उसकी वजह से किसी के बच्चे की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए, और बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, उस दौर में हमने राशन भी वितरित किया, जो भी जरूरी जो सामान है वो वितरित किया। तो वहां से हमने जो है अपनी पहली लाइब्रेरी बनाई, ज्ञान का सफर मोबाइल लाइब्रेरी, जो किताबें लेके जरूरतमंद बच्चों के द्वार तक पहुंचती है।
1: जी, एक और लाइब्रेरी या यूं कहें कि फ्लाइब्रेरी आपने शुरू की, तो फ्लाइब्रेरी शुरू करने का आइडिया आपको कहां से आया?
0: फ्लाइब्रेरी, भारत सरकार इस चीज पे बड़ा जोर दे रही है कि रीडिंग हैबिट है वो बढ़े, तो जो भी उड्डयन मंत्री हैं उनका एक इनिशिएटिव है कि हर एयरपोर्ट पे एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, ताकि जो भी वहाँ पैसेंजर आते हैं उनका जो फ्री टाइम होता है वो उसमें जो है किताबें पढ़े, या फिर अगर वो एरोप्लेन में जा भी रहे हैं तो उस सफर के दौरान भी वो किताबें पढ़े। तो हमने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये लाइब्रेरी बनाई है जिसका नाम है फ्लाइब्रेरी, फ्लाइब्रेरी यानी एरोप्लेन में लाइब्रेरी। तो वहाँ आप जाएं, अपनी मनपसंद किताब चुने, वहाँ आप बैठ के पढ़ें, और आपका मन कर रहा है वो किताब लेके जाने का तो आप एरोप्लेन में अपने सफर के दौरान उस किताब को अपना साथी बनाएं, उसको पढ़ें, और जैसे ही नेक्स्ट एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं तो वहाँ कोई लाइब्रेरी बनी होगी, वहाँ जाके उसको ड्रॉप कर दें। और इन केस अगर आप भूल भी जाते हैं, भाई कई बार किताब इंटरेस्ट बन जाता है, आप लगते हैं पढ़ने के बाद ही देनी है, तो आप हमें वापस पार्सल कर सकते हैं, ये आपकी ऑनेस्टी पे है।
1: तो संदीप जी, ये जो आपकी ओपन आईज फाउंडेशन है, पढ़ाई के अलावा किस तरह से जरूरतमंद बच्चों की मदद करती है, और ओपन आईज फाउंडेशन द्वारा कौन कौन सी और जो हैं वो गतिविधियां की जाती हैं?
0: हम सिर्फ एजुकेशन का बेसिक रिसोर्स प्रोवाइड कराते हैं, और बेसिक रिसोर्स में किताब पेन पेंसिल कॉपी रजिस्टर तक ही सीमित नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं अलग अलग कैटेगरी के, सिंगल पेरेंट ऑर्फन होते हैं, उन बच्चों तक चीजें पहुंच नहीं पाती, वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि मोस्टली जो फैमिली में कमाने वाला होता है वो चला जाता है, मोस्टली फादर्स नहीं रहते बच्चों के। तो हमारा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें हम 100 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं नया सवेरा नाम से, हर साल देते हैं। और दूसरा हमारा प्रोग्राम है मिशन लिटरेसी, इसमें हम लगभग हर साल 2000 बच्चों को एजुकेशनल किट वितरित करते हैं। इसमें ये भी बच्चे ऑर्फन, सिंगल पेरेंट या बहुत ही नीडी बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन रिसोर्स नहीं है एजुकेशन का, तो उनको हम ये सामान उपलब्ध कराते हैं।
1: संदीप जी, जिस तरह से आपने बताया कि आप आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की स्कॉलरशिप द्वारा मदद करते हैं, तो योग्यता क्या रहती है, किस तरह से एलिजिबल होते हैं बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए?
0: देखिए, एक तो ऑर्फन है, ऑर्फन बच्चे की कैटेगरी स्कूल से पता लग जाती है ऑर्फन है या नहीं है। दूसरा है सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट का मतलब है कि दोनों माता पिता में से कोई एक नहीं है। इस केस में ज्यादातर ये होता है, जैसे मान लीजिए 100 बच्चे हैं तो उसमें से 98% यही रहता है कि फादर नहीं होते बच्चे के। और इसमें हमने ये भी ऐड किया है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के फादर हैं और वो वर्किंग है, तो उसके हम फैमिली इनकम कंसीडर करते हैं, 2 लाख से कम एनुअल इनकम है और वो ट्राई सिटी में रह रहा है और वो रेंटेड जगह पे रहता है, तो उसको ये फैसिलिटी मिलती है बच्चों को।
1: जी, तो हर साल लगभग कितने बच्चों को आप स्कॉलरशिप देते हैं, और ये जो आप एजुकेशन किट की बात कर रहे हैं वो अब तक कितनी बांटी है आपने?
0: हर साल हमारी जो स्कॉलरशिप है हम 100 या 110 के बीच में होती है हमारी स्कॉलरशिप, और मिशन लिटरेसी के तहत जो एजुकेशनल किट है वो हम अब तक 10,000 से ज्यादा बांट चुके हैं, और हर साल अब हमारा टारगेट है कि 2000 किट हम हर साल डिस्ट्रीब्यूट करें।
1: संदीप जी, क्योंकि आप समाज सेवक हैं, हर रोज कई चुनौतियों का सामना करते होंगे, तो आप हमें ये बताएं कि समाज की तरफ से किस तरह का आपको सहयोग मिल रहा है और समाज से आप क्या

0: क्या अपेक्षा रखते हैं
1: इस जर्नी में? जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है वो सोसाइटी का ही रहा है मेरे लिए, खास तौर पे क्योंकि मैं एक ऐसा बच्चा था 22-23 साल की उम्र में, फैमिली से मेरे मतभेद थे वैचारिक, तो जो इमोशनल सपोर्ट है वो मिली नहीं वहाँ से, जबकि फैमिली अपनी जगह ठीक है, उनका अपना मानना है, तो समाज के लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे और समाज के लोगों ने मुझे बहुत सारी किताबें दी, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि समाज के लोग, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो साथ ना आए, समय जरूर लगता है क्योंकि समाज में तमाम तरह की चीजें होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, बुरी ज्यादा है आजकल, तो इसलिए लोग थोड़ा सा डरते हैं। जब आप पे विश्वास बनता है, आप अच्छा काम करते हैं, तो समाज आपको हमेशा अप्रिशिएट करता है।
0: तो क्या समाज की तरफ से आपको कोई आर्थिक रूप से भी सहयोग मिल रहा है?
1: जी बिल्कुल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है, सेल्फ फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम 70-80 लोग हैं, अपनी इनकम का एक हिस्सा उसमें डालते हैं और उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। और अभी समाज के लोगों से मेरा यही निवेदन है, अभी हम भारत का सबसे बड़ा रद्दी से शिक्षा बुक बैंक बनाने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टारगेट है जो ट्राई सिटी में बनेगा, और इसमें हम ये पूरे बाहर से हम किताबें और जो स्टेशनरी का सामान है यूज्ड वो इकट्ठा करेंगे, और उसमें लगभग 10 लाख से ज्यादा किताबें रखने की कैपेसिटी होगी, और पूरे भारत की कहीं पे भी कोई भी लाइब्रेरी है, स्कूल में है, कोई पब्लिक लाइब्रेरी है, वो किताबों की वजह से बंद है या वो चल नहीं पा रही, तो उस तक किताबें पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और स्कूली और कॉलेज की किताबों के अलावा जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन बच्चों तक भी किताबें पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है।
0: जी, तो किस तरह से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है? रद्दी से बुक बैंक बनाने की ये जो आप योजना बना रहे हैं, किस तरह से आप इस पर काम कर रहे हैं ताकि बहुत जल्द आपका ये जो सपना है वो भी साकार हो?
1: इसमें बहुत सिंपल सा तरीका है, क्योंकि सोसाइटी के लिए बना रहे हैं तो सोसाइटी के लोगों के सहयोग से हम बनाएंगे। इसमें क्या होता है, ओपनाइज फाउंडेशन, अगर हम फाउंडिंग की बात करते हैं तो वो मेरा नाम आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों ने अप्रिशिएट किया है तो लोगों का नाम साथ कैसे आए। आज बताते हैं कि आप फाउंडर हैं, मैं चाहता हूँ सभी लोग फाउंडर कैसे बन सकते हैं, तो रद्दी से शिक्षा बुक बैंक में हम 200 फाउंडर बनाएंगे। वो फाउंडर ही उस रद्दी से शिक्षा बुक बैंक को बनाएंगे, वो उनकी ही जिम्मेदारी होगी। जो 200 लोग होंगे उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, उन्होंने 5100 रुपए कंट्रीब्यूशन करने हैं 5 साल के लिए, और उन्होंने 5 लोगों को जोड़ना है। अगर हम 200 लोग सारे फाउंडिंग मेंबर इकट्ठे हो जाएंगे और इस अभियान को हम सिरे से चढ़ा देंगे तो हमारा रद्दी से शिक्षा बुक बैंक बन जाएगा।
0: जी संदीप जी, आप बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं तो उनकी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं कि वाकई ये बच्चा जरूरतमंद है और इसको स्कॉलरशिप की जरूरत है?
1: सबसे पहले जो बच्चा होता है, बच्चे का जो ज्यादातर जो जुड़ाव होता है वो पेरेंट्स से होता है और स्कूल से होता है। एक स्कूल टीचर को ये पता होता है कि उसका क्लास का बच्चा है वो कैसा है। हम पहले स्कूल में जाते हैं और स्कूल में हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ऐसे बच्चों की लिस्ट दें जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो हमें लिस्ट देते हैं। लिस्ट देने के बाद हमारी वेरिफिकेशन होती है, सबसे पहले हमारी होम वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद हम सेल्फ डिक्लेरेशन लेते हैं कि इस बच्चे को कहीं और से बेनिफिट तो नहीं मिल रहा, और उसके बाद उस बच्चे को वो सारा बेनिफिट मिलता है और उसका एक फॉर्म बनाया जाता है। एंड ऑफ द ईयर हमें ये पता लग जाता है कि एक साल में एक बच्चे पे कितना खर्च हुआ। और इस अभियान की खास बात ये है, 110 बच्चे हैं, अगर 110 बच्चों की शिक्षा की बात की जाए, स्कॉलरशिप दी जाए, तो पैसा बहुत ज्यादा लगता है, लगभग 8 से 10 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से? तो इसके लिए हमने एक खूबसूरत इनिशिएटिव लिया है कि हर बच्चे का एक डोनर फाइंड किया है। 100 बच्चे हैं तो उनके 100 ही डोनर हैं। समाज में बहुत से लोग होते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो 100 डोनर उन 100 बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बस हम तो 20 की कड़ी का काम कर रहे हैं, हम तो गैप को खत्म कर रहे हैं।
0: जी, तो आप किस तरह से मिलाते हैं डोनर और बच्चों को?
1: इसमें ये है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम कोई भी अच्छी चीज करते हैं, घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, या कुछ खाते हैं, फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, तो हम व्हाट्सएप स्टेटस पे एक स्टेटस लगा देते हैं कि आज हमारी फैमिली टुगेदर हुई। उसी तरीके से हमने कहा कि क्यों ना हम इन बच्चों की जानकारी लेके अपने स्टेटस पे लगाएं और जो लोग देखें उनको पता लगे भी ये बच्चा वास्तव में ही नीडी है। तो उस तरीके से हमने व्हाट्सएप स्टेटस का सहारा लिया, हमने एक बच्चे की फोटो लगाई, उसके बारे में 3 लाइनें लिखी, बच्चा यहाँ रहता है, इसके पेरेंट्स नहीं है, जो भी उसकी कहानी है, तो आप जैसे लोग उसको देखते हैं, और हर इंसान चाहता है कि मैं कभी न कभी कोई न कोई सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन दूं, तो वहां से वो कहते हैं कि इसके आप साल का खर्चा बताएं, हम इसकी एजुकेशन स्पॉन्सर करेंगे। अगर 100 बच्चों की बात करूं तो मैं 24 घंटे के अंदर उन 100 बच्चों के सारे डोनर हमें मिल जाते हैं।
0: जी संदीप जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, यहां पर हम आपकी पसंद का एक और गीत आपको और सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो इस बार कौन सा गीत सुनवाएं?
1: संगीत की बात है तो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा।
0: जी बहुत ही अच्छा गीत है, आइए सुनते हैं।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं समाज सेवक द बुक मैन ऑफ चंडीगढ़ और ओपन आईज फाउंडेशन के संस्थापक श्री संदीप कुमार। संदीप जी, आप बात कर रहे थे कि 100 बच्चे आपके पास हैं तो 100 ही आपके पास डोनर हैं, तो अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के लिए डोनर बनना चाहता है, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेना चाहता है, तो वो किस तरह से आपकी संस्था के साथ जुड़ सकता है?
1: उसमें अगर डायरेक्ट व्यक्ति कोई आता है तो पहले उसको रिक्वेस्ट करनी होगी। हमारे सोशल मीडिया के तहत बहुत से चैनल होते हैं, कई बार लोगों को पता भी नहीं होता है भी हम कॉन्टेक्ट कैसे करें, तो सोशल मीडिया पे हमने अपने हेल्पलाइन नंबर है, अगर वो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते तो हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके वो अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो रिक्वेस्ट देने के बाद हम बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस डोनर को उस बच्चे से मिलाते हैं, उसके बाद ये सफर जारी रहता है।
0: जी, और संदीप जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आपके रद्दी से शिक्षा अभियान का जिक्र किया, आपकी बहुत सराहना की, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आपको महसूस हुआ और रद्दी से शिक्षा अभियान को किस तरह से राष्ट्रीय पहचान मिली?
1: 2020 में जब हम कोरोना के दौरान काम कर रहे थे, हमने मोबाइल लाइब्रेरी बनाई थी, उसके बाद लगातार हम काम कर रहे हैं, तो काम करने के बाद अचानक से देखा कि वेरिफिकेशन शुरू हुई हमारी, कभी कोई पुलिस डिपार्टमेंट से आ रहा है, कभी कोई सीआईडी से आ रहा है, फिर जिन कॉलोनियों में हमने काम किया है उन कॉलोनियों से हमारे पास फोन आने लगे, फिर लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं। जब भी हम बच्चों को कोई भी सामान देते हैं तो हम इतना सामान देते थे कि एक बार बच्चे का काम चले, तो वो कहते हैं आप सरकार से पैसे लेते हो, आप हमें कम सामान दे के जाते हो। तो जब हमने उनसे पूछा कि आप ये कैसे कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सरकार आ रही है, वो पूछ रही है भाई ये संस्था आई थी क्या, इन्होंने कोई सामान दिया। फिर देख रहे हैं कि दूसरे दिन फिर जिन स्कूलों में हमने सामान डिस्ट्रीब्यूट किया वहाँ के टीचर का फोन आ रहा है, भाई आपकी वेरिफिकेशन हो रही है, आपके बारे में पूछा जा रहा है। फिर मेरे मेंटर हैं, उन्होंने बताया भी आपके बारे में वेरिफिकेशन हुई है, यानी चारों तरफ से फोन कॉल्स आ रहे हैं कि आपकी वेरिफिकेशन हो रही है। तो अंदर ही अंदर डर भी लग रहा है, क्योंकि डर इसलिए लग रहा है कि मैं एक किसी सरकारी अधिकारी से मिला, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप बहुत यंग हो, जैसे आगे बढ़ोगे तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। तो मुझे लगा कि सर वाली बात पूरी हो रही है कि भी हम काम कर रहे हैं, आपको पंजाब के मुख्यमंत्री अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग पीछे पड़े हुए हैं आपके और आपको फंसाने का काम कर रहे हैं। तो मैं अपने एक मेंटर के पास गया, मैंने उनसे बात साझा की कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा आप जो काम कर रहे हो क्या वो पूरा डॉक्यूमेंटेड है? मैंने कहा हाँ जी पूरा डॉक्यूमेंटेड है। आप जो फंड्स लेते हो जितने भी फंड्स आते हैं वो ट्रांसपेरेंट है? मैंने कहा बिल्कुल है। कह रहा फिर आप घबरा क्यों रहे हो? फिर मैंने भी सोचा हाँ मैं घबरा क्यों रहा हूँ, जब मेरी सारी चीजें इतनी बिल्कुल सही हैं तो मुझे घबराने की क्या जरूरत है? तो फिर घबराहट तो स्वाभाविक है, लोग पूछेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो एक दिन मैं ऐसे ही प्रोग्राम में था बापू धाम में सेक्टर 26 में, हम किताबें बांट रहे थे, तो अचानक से मैंने देखा कि मेरे फोन पे इतनी फोन कॉल्स आ रही है बार बार। हम प्रोग्राम में था तो मैं फोन अटेंड नहीं कर रहा था, मैं बार बार उसको साइलेंट कर रहा फोन को। फिर मतलब करीबन आधे घंटे के अंदर लगभग 200 से 300 मिस कॉल्स, और मेरी धड़कन इतनी तेज, मेरे शरीर से पसीना आ रहा, क्योंकि दोनों चीजें चल रही। एक चीज तो ये चल रही कि उस सर ने ऐसे कहा था कि लोग

0: पीछे पड़ जाएंगे और आपको फंसा भी सकते हैं। दूसरी चीज ये कि होगा तो होगा क्या, मैंने तो कुछ गलती नहीं किया। तो जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, मैं अपने स्कूटर से मैं वापस आया, तो रास्ते में मैंने रोक के मैंने कहा कि मैं फोन मिलाता हूँ। तो मैंने ये देखा कि जितने भी मिस कॉल्स आई हैं, उनमें सबसे सही आदमी कौन सा है जो मुझे सही जानकारी दे सके, ताकि मैं उसको फोन मिलाऊं। और मैंने देवेंद्र शर्मा जी हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर काम करते हैं, तो मैंने मेरे मेंटर हैं और मैंने उनको फोन मिलाया। और जैसे ही वो रिंग गई और उसके बाद मेरी जो धड़कन है वो इतनी तेज है, मैं आपको मतलब शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब तक उन्होंने फोन नहीं उठाया तब तक, और जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने कहा, बधाई हो संदीप, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपकी तारीफ की है, आपका जो इनिशिएटिव है वो करोड़ों लोगों ने सुना है। और मुझे लगता है ये बात सुनने के बाद जो एक सुकून की जो एक सांस ली मैंने, वो आज तक की सबसे खूबसूरत मुझे वो जो मोमेंट लगता है अपने जीवन का, वही लगता है कि एक पल ऐसा था कि घर वाले आपको बुला ही नहीं रहे हैं, दोस्त रिश्तेदार आपसे दूर जा रहे हैं
1: जी,
0: आपको कोई जानता ही नहीं है, और दूसरा जो देश का राजा है वो इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे आपकी तारीफ कर रहा है जबकि आपने वहाँ अप्लाई नहीं किया, आप उसको जानते नहीं हो, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो ये हमारे लिए वास्तव में एक खुशी की बात थी
1: जी। माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में आपकी सराहना की, तो आपकी फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था, क्योंकि शुरुआत में वो आपसे नाराज थे, तो उस दिन से आपकी फैमिली वालों का क्या बिहेवियर है आपके प्रति?
0: हाँ, उस दिन से उन्हें लगा कि हाँ मतलब हमारे लड़के ने कुछ तो किया है, मतलब हमारे लड़के ने ऐसा किया है कि किसी ने नहीं करके दिखाया। तो उसके बाद मेरा आना जाना शुरू हुआ है, आज भी हम आते जाते हैं, लेकिन एक जो डिस्टेंस है बीच में, वैचारिक मतभेद, वो आज भी है। बट वो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए थोड़े चिंतित होते हैं कि यंग एज में वो थोड़ा सा सही ट्रैक पे रहे, तो ये फैमिली का होना स्वाभाविक है। लेकिन आज मेरी फैमिली वालों को मेरे पे गर्व है और वो ये कहते हैं कि कम से कम लीक से हटके किसी एक ने तो काम किया, कम से कम देश और समाज के बारे में सोचा।
1: जी संदीप जी, क्योंकि आज बहुत से सुनने वाले हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो चलते चलते आप उनको समाज सेवा को लेकर क्या कहना चाहेंगे?
0: मेरा एक ही संदेश है कि आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद आपका जो भी रिसोर्स बचता है आपने उसे रद्दी में नहीं देना है, आपने उसे एजुकेशन का माध्यम बनाना है। क्योंकि जिन किताबों को या जिस रिसोर्स को पढ़कर आप अपने सपने पूरे कर रहे हैं, एक दिन आप उन्हीं सपनों को रद्दी के ढेर में दे देते हैं। तो ये हम सबके लिए सीख है कि आगे से हमने ऐसा नहीं करना है, हमने आसपास ऐसा बच्चा ढूंढना है जिस बच्चे तक हम ये रिसोर्स पहुंचा सके, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं तो औरों को भी आगे बढ़ाएं। और आपको ऐसे बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें सर्च कीजिए ओपन आइज फाउंडेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और हम आपके घर आएंगे और आपके घर आके वो किताब आपसे लेके जाएंगे।
1: संदीप जी, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए, सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी आपका, आपकी सारी टीम का और आपके श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, आज सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे समाज सेवक, द बुक मैन ऑफ चंडीगढ़ और ओपन आईज फाउंडेशन के संस्थापक श्री संदीप कुमार। कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया प्रशांत वशिष्ठ ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अश्विनी कुमार। अब आज का सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
3: अभी आपने सुना सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी है, ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। 6 बजन वाले ने कुछ ही पलों विच असी अपने दिल्ली केंद्र तो समाचार रिले करांगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा

0: केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: एक जरूरी सूचना सुनो, प्रसार भारती दे अधीन आकाशवाणी चंडीगढ़ विच नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम तहत साल 2026-27 लई अप्रेंटिसशिप ट्रेनी वजों सिख्यार्थियां नू रखा

0: ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਫਿਲਮ ਸੰਗੀਤ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। 9,44,00,000 किसानों के खाते में 18,880 करोड़ से अधिक की राशि डाली गई। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने पलवल और हथीन में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत देश भर में मॉक ड्रिल की गई। हरियाणा में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए निशुल्क बस सुविधा मिलेगी और हरियाणा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय

0: योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में होगा। योग दिवस के उपलक्ष्य में आज विभिन्न जिलों में प्रायोगिक अभ्यास किए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खाते में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई।
1: आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे हैं। मैं देख के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता।
0: 23वीं किस्त में 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस उपलक्ष्य में पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को मुख्यमंत्री नायब सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसान की छोटी छोटी चिंताओं का भी हल हो।
2: मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो, मेरे किसान डगमगाए ना, उसको ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर हमारे 15,95,644 किसानों के खातों में आज 319,13,00,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में पहुँच जाएगी।
0: उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति के कारण इस योजना का लाभ किसानों तक बिना किसी बिचौलिए के पहुंच रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल में क्लॉक टावर के नजदीक सफाई अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने झाड़ू लगाकर स्वयं भी श्रमदान किया और लोगों से भी सफाई अभियान में सार्थक सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर मोदी सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों की पुस्तिका भी लोगों को वितरित की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक दीपक मंगला भी उपस्थित रहे। श्री गुर्जर ने कहा कि इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश आर्थिक तौर पर मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री पर देश के लोगों का भी भरोसा बढ़ा है, दुनिया के अन्य देशों के लोगों का भी भरोसा बढ़ा है। अमेरिका की बाल्टिक कंसल्ट सर्वे कंपनी ने श्री मोदी को दुनिया में सबसे मजबूत और लोकप्रिय प्रधानमंत्री बताया है। ये देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। श्री मोदी के हाथों में देश का खजाना सुरक्षित है और देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं, इसीलिए देश लगातार आगे बढ़ रहा है।
1: 12 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, हेल्थ में भी, कृषि में भी और शिक्षा में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। जहाँ हाईवे बने हुए हैं, एयरपोर्ट दुगने से ज्यादा हुए हैं, मेडिकल कॉलेज दुगने से ज्यादा हुए हैं, MBBS की सीट दुगने से ज्यादा हुई है, एक्सपोर्ट जो रक्षा का उत्पादन है वो भी 35 गुना बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी लगभग 57 गुना ज्यादा हुआ है, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% हुआ है, जिससे 64% डीजल की खपत कम हुई है।
0: श्री गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का कार्य किया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, महाकाल मंदिर, केदारनाथ व बनारस मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज हथीन में भी एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और स्वच्छता का संदेश देते हुए सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रवीण डागर व हरजीत डागर भी उपस्थित रहे। श्री गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और जन कल्याण को समर्पित हैं।
3: मोदी सरकार के 12 वर्ष विश्वास के, विकास के और जल कल्याण के है। कहते नीयत साफ हो और नीतियाँ सही हो तो परिणाम जमीन पर देखने को मिलते हैं। मोदी जी की सरकार में और मोदी जी खुद की नीयत भी साफ है, उनकी नीतियाँ भी स्पष्ट हैं, इसलिए 12 सालों में देश के लोगों ने विकास के परिणाम देखे। मोदी जी पहले दिन से राष्ट्र निर्माण के मिशन को लेकर आगे बढ़े।
0: उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम प्रधानमंत्री की सोच का परिचायक है। श्री गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्षों में जहां कृषि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुए हैं, वहीं स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने का कार्य किया गया है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कॉलेज खोले गए हैं। इन 12 वर्षों में रेल व सड़क संरचना का भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली

0: ईटीयूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल की गई। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरा दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल हुए। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। हरियाणा सरकार ने नीट परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए कल परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में निशुल्क बस सुविधा दी है। नीट प्रवेश पत्र दिखाकर अभ्यर्थी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हरियाणा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज फरीदाबाद सहित विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन व आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में प्रायोगिक अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंडलायुक्त संजय जून तथा उपायुक्त आयुष सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, योग संस्थाओं के प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों सहित लगभग 1400 लोगों ने भाग लेकर योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। कार्यक्रम के दौरान हरित योग की थीम अनुसार वृक्षारोपण भी किया गया। अधिकारियों व प्रतिभागियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और अधिक से अधिक लोगों को योग से जुड़ने का आह्वान किया। कैथल जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश राविश ने आज अतिरिक्त अनाज मंडी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रायोगिक अभ्यास में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों, खिलाड़ियों व विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। श्री राविश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह के संबोधन का सीधा प्रसारण होगा। जिला स्तरीय योग कार्यक्रम में सांसद नवीन जिंदर और कलायत में विधायक सतपाल जांबा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में भी योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। आयुष विभाग और पतंजलि के सहयोग से आयोजित इस शिविर में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि इस शिविर से राज्य सरकार की फिट हरियाणा पहल को नई दिशा मिल रही है। शिविर के माध्यम से योग युक्त नशामुक्त हरियाणा एवं औषधीय पौधारोपण द्वारा हरित योग का प्रभावी संदेश दिया गया। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने आज हिसार स्थित नई सब्जी मंडी में अटल किसान श्रमिक कैंटीन का उद्घाटन किया। इस कैंटीन में किसानों, श्रमिकों व मंडी में कार्यरत मजदूरों को 10 रुपए में पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में श्री गंगवा ने कहा,
1: बहुत सी नई योजनाएं श्रमिकों के लिए है, चाहे वो बीमा की बात हो, 60 साल का कोई भी श्रमिक हो जाता है उसको केंद्र सरकार की तरफ से भी 3,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है और हरियाणा में 3200 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी जाती है जो पूरे देश में सर्वाधिक है। और भी बहुत सी योजनाएं हमारे श्रमिक के लिए है, चाहे वो बेटी की शादी के अंदर कन्यादान हो, चाहे मकान बनाने की बात हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश भर के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा मकान बनाने के देने का काम किया है।
0: खंड कार्यक्रम प्रबंधक अनु मलिक ने बताया कि हिसार में ऐसी 6 कैंटीन हैं।
2: कैंटीन का संचालन हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं उनकी महिलाएं करेंगी। इस कैंटीन में जो खाना मिलेगा 10 रुपए में थाली दी जाएगी और 20 रुपए में थाली रहेगी, 10 रुपए गवर्नमेंट देगा। टोटल हिसार में 6 कैंटीन चल रही है।
0: डिजिटल भारत निधि कोष के तहत दूरसंचार क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत BSNL को देश के ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में 1.5 करोड़ FTTH कनेक्शन देने का लक्ष्य दिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: PLI है ना,
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है, हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रतिशत खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। कल दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। पंजाब समेत देश भर में योग समारोह का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: और सुन दें अगला गीत, मंगी महल दी वास्ते विच।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? शुदन लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शुदन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शुरदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। विशेष जयमाला।

0: फौजी साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने अभिनेता अमरीश पुरी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
1: मेरे प्यारे फौजी भाइयों, आपका मनोरंजन करने के लिए मैं चाहता तो था कि आपके रूबरू खड़ा होकर आपका दिल बहलाने की बातें करूं, लेकिन मुझे अपनी आवाज के जरिए ही आप तक पहुंचना होगा। मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलेन की भूमिका निभाता हूं। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूं और आप सब की तरह सीने में दिल रखता हूं, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सब की तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूं और महसूस करता हूं कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना। ये कुर्बानी आप लोग करते हैं हमारी सरहदों की रक्षा करने के लिए, और इसके लिए मैं आपको लाखों सलाम करता हूं। आप मेरे इतने करीब हैं कि मुझे अपने से लगते हैं। कारण, मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका। वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन।

आप लोगों की तरह हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। आप देश की रक्षा करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदन लाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे। उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। उनकी आवाज आज भी कानों में इस तरह से गूंजती है कि मानो वो जिंदा आवाज हो। ऐसा नहीं लगता कि वो चले गए हैं। वो आज भी हमारे सामने उसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए हाजिर हैं, सामने दिखते हैं। उन्होंने जो गाने गाए, मैं बचपन से ही उससे बहुत मुतासर रहा हूं। जो उनका एक नई उम्मीद लाने वाला गाना मुझे अच्छा लगता था, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक बंगला बने न्यारा।

अपने परिवार की परंपरा को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहां भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके, वो आप बखूबी जानते हैं। मेरी नजर में वो एक बहुत महान कलाकार थे। उनकी जो अंदर से आवाज निकलती थी, वो अपने कला की प्रदर्शनी जो अंदर से करते थे, दिल से करते थे, वो उनके कैरेक्टर के ऊपर छा जाती थी। बहुत कमाल था उनके पास, वो जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और उसी को वो अपने अलग अलग रोल्स में घोल के हमें दिखाते थे। वो मेरे पिता समान थे, मेरे गाइड थे, मैंने जिंदगी में उनसे बहुत कुछ सीखा। मदनपुरी जी से मुझे अब संगीत की दुनिया में आते हुए एक ऐसा नाम याद आ रहा है जो मेरे ख्याल में संगीत की दुनिया में बहुत ऊंची पोजीशन रखता है। कमाल है, यानी उनका संगीत जैसे आपके रोम रोम में अंदर घुस जाता है, आपके दिल को छूता है, वो है मदन मोहन जी। मदन मोहन जी ने इतनी अच्छी कॉम्पोजिशंस हमें दी हैं कि हम वाह वाह कर उठते हैं। खुशी के फुव्वारे आसमान को छूते हैं जब लता जी हीर रांझा में ऐसे गाती हैं।

ये मेरी खुशकिस्मती है कि फिल्मों में होने के कारण मैं फिल्मों की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के बहुत करीब रहा हूँ। किशोर कुमार जी को आपने सुना है, वाह वाह क्या दिल से गाते थे वो। उनकी आवाज में सोज था, खुशी थी, दर्द था, यानी उन्होंने किस किस्म के गाने नहीं गाए। और इतने मजाकिया कि जब आपके सामने हों तो वो गाने के साथ साथ आपको हंसाते भी रहते थे। इसीलिए वो जब अपने प्रोग्राम करते थे, जैसे स्टार नाइट्स होती हैं तो किशोर कुमार नाइट होती थी। हाँ, मुझे उनके साथ लंदन जाने का भी मौका मिला था। ये उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले मैं उनके साथ लंदन गया था, तो वहाँ किशोर जी ने कहा कि हम क्या प्रोग्राम दें, बताओ हम क्या प्रोग्राम दें। मैंने कहा जी आप तो गाने का ही प्रोग्राम देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम तो गाएंगे, तुम क्या करोगे। मैंने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने कुछ दूसरी आइटम दूंगा, मैं स्टेज पे आके कुछ बोलूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम हमारे साथ गाओ, तुम्हें गाना पड़ेगा। मैंने कहा किशोर जी कहाँ आप और कहाँ मैं हिम्मत नहीं रखता आपके सामने वहाँ स्टेज पे गाने की। अरे जाओ जाओ, ऐसा क्या बोलते हो, तुमको गाना पड़ेगा, आओ। तो उन्होंने स्टेज पर मिस्टर इंडिया का गाना गाया और साथ में मुझे भी गाने के लिए कहा। मैंने गाया, अब वो गाना तो मेरे पास रिकॉर्डेड है नहीं, मैं आपको सुना नहीं सकता। हाँ, एक और अच्छा सा गाना मैं उनका सुनाता हूँ जो उन्होंने प्यार का मौसम फिल्म में गाया है, बहुत ही प्यार से। वो कुछ इस तरह से है। हाँ हाँ।

0: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: विशेष जयमाला। इस कार्यक्रम में वक्त हुआ है एक अंतराल का।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
2: सुबह जलाओ शाम जलाओ
3: देव दर्शन धूप।
2: सुबह जलाओ शाम जलाओ
3: देव दर्शन धूप।

0: विशेष जयमाला कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता अमरीश पुरी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
1: हमारे महान गायकों में रफी जी का नाम बहुत ऊंचे दर्जे पे आता है। उन्होंने किस किस मूड के गाने नहीं गाए, हंसी के, खुशी के, गम के, क्लासिकल, लाइट, मजाहिया, हर किस्म के गाने गाए उन्होंने। बहुत सोच था उनकी आवाज में, जादू था। एक दिल सौ अफसाने में उन्होंने एक बहुत अच्छा गाना गाया है लता जी के साथ।

जिगबी एक अपनी जगह रखता है। बहुत सोच था उनके म्यूजिक में, उनके कॉम्पोजिशन में। लीजिए मैं उनकी एक बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन लता जी की गाई हुई, जो रात की रोशनी में फिल्माई गई थी, वो आपको सुनाता हूँ।

राज कपूर जी, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होने के अलावा वो एक बहुत बड़े कलाकार भी थे, बहुत अच्छे एक्टर थे। कुछ फिल्मों में तो उन्होंने कमाल ही कर दिखाया। वो रोल के अंदर अपने ढंग से घुस जाते थे। उनकी कुछ लाइट फिल्में भी थी, सीरियस फिल्में भी उन्होंने की हैं। तो लाइट फिल्मों में जैसे एक उनकी फिल्म थी चोरी चोरी। हमारे इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर आए हैं, आए थे, चले गए, अभी भी हैं, जो बहुत अच्छा म्यूजिक दे रहे हैं और आपका मनोरंजन कर रहे हैं। कुछ म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे हैं जो खुद गाते भी हैं और बहुत अच्छा गाया है उन्होंने। उनमें से एक हैं बर्मन दादा, एस डी बर्मन। क्या बात थी उनकी म्यूजिक की, एक एक गाना माइलस्टोन था उनका। बंदनी में उन्होंने खुद एक गाना गाया जो आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है।

0: विशेष जयमाला कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता अमरीश पुरी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
1: लता मंगेशकर हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस नाम से वाकिफ है। हिंदुस्तान ही नहीं, लता जी का नाम दुनिया में फैला हुआ है हवा की तरह। लता जी ने वो गाने गाए हैं और इतने अच्छे ढंग से गाए हैं कि वो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। ये सही बात है कि उनको जो पदवी मिली ये गाने गाने से, दादा साहब फाल्के अवार्ड उन्हें दिया गया, लता जी उस अवार्ड के खास हकदार थीं।

लता जी के साथ साथ उनकी बहन आशा भोसले। वाह वाह, क्या बात है उनकी आवाज में, क्या सोज है, क्या जादू है। ये जादू शब्द मैं बहुत की आवाजों के साथ मिला चुका हूं, लेकिन शब्द ही ये कॉमन है, क्या करूं, जादू ही है। और ऐसा अच्छा गाती हैं कि आप आंखें बंद करके महव हो जाते हैं गाना सुनने में। उन्होंने कुछ गाने हमारे एक बहुत ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब के डायरेक्शन में गाए हुए हैं, जिनमें से एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे याद आ रहा है। लीजिए आप भी सुनिए।

प्यारे फौजी भाइयों, समय खत्म होता जा रहा है लेकिन मेरे गानों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई, तो मैं क्या करूं? मैं जा रहा हूं भाई, मैंने इतने गाने सुनाए आपको, आप भी तो मेरे लिए एक गाना गाइए।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: सुनो कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी का तीसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे। वाचक स्वर ममता सिंह। इस कहानी में अब तक आपने सुना
2: राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थीं। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू दो सगे भाइयों से हुआ। दोनों बहनें नैहर की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगीं। शिवदास को पेंशन मिली, दिन भर द्वार पर बैठे गपशप करते। भरा पूरा परिवार देख देख प्रसन्न होते, लेकिन देव गति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गईं। कदाचित उसने सोचा था घर स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पुछ जाएंगे, कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम न करना पड़ेगा। इसलिए उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंकी थी। वैधव्य की व्यथा को स्वामित्व के गर्व से दबा देना चाहता था। कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे वसंत आ गया। भीतर बाहर जहाँ देखिए किसी निपुण प्रबंधक के हस्त कौशल, सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखते थे। वो गृहस्थी की संचालिका है। सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वो कहती है वही होता है। गांव में प्यारी की सराहना होती थी। दुलारी को लड़का हुआ तो प्यारी ने धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया। कुछ दिनों के बाद शिवदास भी इस दुनिया से चले गए। उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए। वो भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, संचालक अच्छा।

0: करता था, इसीलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर हार का भी लगाना पड़ता। कहने को तो अब मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आँखों की ज्योति कम हो गई, मगर वो प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव इस सारे जख्म पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने का जी होता है, यहाँ कमाई में कोई बरकत नहीं। कोई आदमी पूरब से आए हैं, वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपए रोज की मजूरी मिलती है, 4-5 साल भी रह गया तो मालो माल हो जाऊंगा। प्यारी ये प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई, आंखों में आंसू लाकर कहा, जो ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे। दुलारी बोली, ये कैसे हो सकता है बहन, यहाँ देहात में लड़के क्या पढ़ेंगे लिखेंगे, बच्चों के बिना इनका जी वहाँ न लगेगा। प्यारी बोली, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी, मुझे भी लेते चलो।
1: अब आगे सुनिए।
0: दुलारी उसे साथ ले चलने को तैयार न थी, कुछ दिन जीवन का आनंद उठाना चाहती थी। बोली, बहन तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ का सारा कारोबार तो चौपट हो जाएगा, तुम तो कुछ न कुछ देखभाल करती ही रहती हो ना। प्रस्थान की तिथि के एक दिन पहले ही राम प्यारे ने रात भर जागकर हलवा और पूरियां पकाई। जब से इस घर में आई, कभी एक दिन के लिए भी अकेले रहने का अवसर नहीं आया, दोनों बहनें सदैव साथ रहीं। आज उस भयंकर अवसर को सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जाता था। वो देखती थी मथुरा प्रसन्न है, बाल वृंद यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूल गए हैं, तो उसके जी में आता वो भी इसी भांति निर्द्वंद रहे, मोह और ममता को पैरों से कुचल डाले। किंतु ये ममता जिस खाने को खाकर पली थी, उसे अपने सामने से हटाए जाते देख क्षुब्ध होने से न रुकती थी। प्यारी के सिर सारे प्रबंध का भार था। विदाई का दिन प्यारी के लिए प्रतीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कहीं चली जाए, जिससे वो दृश्य देखना न पड़े। ज्यों ज्यों समय निकट आता था, उसकी वृत्तियां शिथिल होती जाती थी। वो कोई काम करते करते जैसे खो जाती थी और अपलक नेत्रों से किसी बिंदु की ओर ताकने लगती थी। बच्चे नए नए कुर्ते पहन नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद में लेना चाहती तो रोने का समूह बनाकर छुड़ाकर भाग जाते। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले से ही उस पर जा बैठे। गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वो दुलारी से थोड़ी देर एकांत में गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरी खोज खबर लेते रहना, लेकिन इस भड़बड़ में उसको इन बातों का मौका ही न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे। प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रह गई। कई दिन तक प्यारी मूर्छित सी पड़ी रही, न घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुंह धोया। उसका हलवाहा जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। जोखू कामचोर बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बार बार डांटती रहती थी, 2-1 बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह से फिर रख लिया था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझलाती, ये काम करने क्यों नहीं जाता, यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मगर उसे झिड़क देने को जी न चाहता था। उसे इस समय सहानुभूति की भूख थी। धीरे धीरे क्षोभ का वेग कम हुआ, जीवन के व्यापार होने लगे। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था, सारे काम पूर्ववत चलने लगे। उधर मथुरा के चिट्ठी पत्री न भेजने से उसके अभिमान को और भी उत्तेजना मिली। घर में तो अब विशेष कोई काम रहा नहीं, प्यारी सारे दिन खेती बारी के काम में लगी रहती। प्यारी की मनोवृत्तियों में भी एक विचित्र परिवर्तन आ गया। अब वो साफ सुथरे कपड़े पहनती और मांग चोटी की ओर से भी उदासीन न रहती, आभूषणों में भी रुचि हुई। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़ाए और भोजन भी संयम से करने लगी। एक दिन जोखू हार से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहाँ क्या करता रहा। जोखू ने कहा, 4 क्यारियाँ बच रही थी, मैंने सोचा 10 मोट और खींच दूं, कल की झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे, वो हील बहाने करता था। अब सब कुछ उसके हाथ में था।

प्यारी सारे दिन हार में थोड़ी ही रह सकती थी, इसलिए अब इसमें जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा लो अब हाथ मुंह धो लो, आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत का काम आज ही निपटाना जरूरी था, कल भी होता, क्या जल्दी थी आखिर। जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है, चिढ़कर बोला, मालकिन तुम दाएं बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें आखिर क्यों कूदती हो। आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ है, सवेरे मैं न पहुंचता तो कोई और आकर उसे छेक न लेता, फिर अठवारे तक राह देखनी पड़ती, तब तक तो सारी ऊख विदा हो जाती। हाँ, प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे तो मैं तुझे कह थोड़ी न रही हूँ पागल, अरे मैं तो कहती हूँ जान रखकर काम किया करो, अरे कहीं बीमार न पड़ जाओ, बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, जोखू बोला, कौन बीमार पड़ जाएगा, मैं 20 साल में कभी सिर तक दुखा नहीं, आगे की नहीं जानता, कहो रात भर मैं काम करता रहूं। प्यारी बोली, मैं क्या जानूं, तुम ही अतरे दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता था तो कहते थे जुर आ गया था, पेट में दर्द था। हाँ, जोखू झेपता हुआ बोला, अरे वो बातें तब की तब थी, जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस डालें, अब तो जानता हूँ मेरे ही माथे है सब, मैं न करूँगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी बोली, मैं क्या देखभाल नहीं करती। जोखू ने जवाब दिया, तुम बहुत करोगी, दो बेर चली जाओगी, सारे दिन तुम वहाँ बैठी नहीं रह सकती ना। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर लिया, बोली, तू इतने रात गए चूल्हा जलाओगे, कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते। जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, मालकिन तुम भी खूब कहती हो, अपने पेट भर को तो होता नहीं, सगाई कर लो। हाँ, प्यारी बोली, आज मेरी रसोई में खाओ ना, देखूं कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, अरे नहीं मालकिन, नहीं, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ, आध रात शेर की दो रोटी बनाकर खिला दो तो खा लूं। प्यारी बोली, मैं तो तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी, फुलके। जोखू बोला, हाँ तब तो सारी रात खाते ही बीत जाएगी। प्यारी बोली, बको मत, चटपटा कर बैठ जाओ। जोखू बोला, जरा बैलों को पानी देता हूँ तो बैठूं। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई जरूरत नहीं, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए, जुआर बाजरा सन अरहर सब तो हैं, धान न सही। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा, मैं क्यों किसी से पीछे रहूं। बाबा के जमाने में 5 बीघे से कम नहीं रोपा जाता था, बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिए, मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोपा, तो मैं क्या सबसे गया बीता हूँ, मैं 5 बीघे से कम न लगाऊंगा। हाँ, अरे तब घर के 2 जवान काम करने वाले थे, मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ, दोनों के बराबर काम क्यों न करूंगा, चल झूठा कहीं का। कहते थे 2 शेर खाता हूँ, 4 शेर खाता हूँ, आध शेर में रह गए, एक दिन तौलो मालकिन तब मालूम होगा। अरे हाँ तौला है, बड़े खाने वाले, मैं कह देती हूँ धान न रोपो, हाँ मजूर मिलेंगे नहीं, अकेले हलकान होना पड़ेगा तुम्हें। अरे तुम्हारी बला से मैं ही हलकान होऊंगा ना, ये देह किस दिन काम आएगी भला। प्यारी ने उसके कंधे पर से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर दिन से पहर रात तक ताल में रहोगे और अकेले मेरा जी उबेगा। जोखू को जी उबने का अनुभव न था, कोई काम न हो तो आदमी पढ़कर सो रहे, जी क्यों उबे भला। बोला, जी उबे तो सो रहना, मैं घर रहूंगा तब तो और जी उबेगा, मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सूझती है, बातों में देर हो रही है और बादल घिरे आ रहे हैं। प्यारी ने हार कर कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, कल से जाना, आज बैठो यहीं। जोखू ने मानो बंधन में पड़कर कहा, अच्छा ये लो बैठ गया, कहो क्या कहती हो। प्यारी ने विनोद करते हुए कहा, अरे कहना क्या है, मैं पूछती हूँ अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते, अकेली मरती हूँ तब 1 से 2 हो जाऊंगी। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बेबात की बात छेड़ दी मालकिन।

0: अरे किससे सगाई कर लूं यहाँ? मैं ऐसी मेहरिया लेकर क्या करूंगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहे? प्यारी बोली, ये तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई। ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी न चाहे? जोखू बोला, ये मैं थोड़ी ही कहता हूँ कि वो गहने न चाहे, हाँ मेरी जान न खाए। तुमने तो कभी गहनों के लिए हट ही न किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो? जोखू बोला, अभी मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई। बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी। तो फिर मैं ना कहूंगा, प्यारी ने उसे पीछे की ओर ढकेलते हुए कहा। कहोगे कैसे नहीं, मैं तो कहला के छोड़ूंगी। हाँ, जोखू बोला, मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी तरह हो, ऐसी ही गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसा ही अच्छा खाना पकाती हो, ऐसी ही किफायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो सगाई करूँगा, नहीं तो इसी तरह पड़ा रहूँगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो, हंसी हंसी में तुम सब कुछ कह गए, सब कुछ। कहानी स्वामिनी का प्रथम प्रकाशन हिंदी में मासिक विशाल भारत सितंबर 1931 में प्रकाशित मानसरोवर भाग एक में संकलित उर्दू रूप मालकिन शीर्षक से उर्दू कहानी संग्रह वारदात में संकलित।
1: मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी का तीसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। सुनो कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत वाचक स्वर ममता सिंह, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
2: सुनो कहानी।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक बस कुछ ही पलों में।

0: समीर ने और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने।
1: ये है विविध भारती।
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है महासटैली।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
0: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान
2: और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
0: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
0: ये स्वर है अभिजीत और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

0: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट

सरदी से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनने जा रहे हैं। स्वर अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों के, गीत रचना समीर की और संगीत ए आर रहमान का।

0: और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन लाया, कौन लाया?
3: ये आवाज है अलका याग्निक की, फिल्म का नाम है हमराज, गीतकार है सुधाकर शर्मा और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं।

0: इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
2: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार

0: प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक।

0: ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਦ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਕੇ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4: ਰਾਤਰੀ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਹੈ, ਲੀਜੀਏ ਸੁਣੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਪ ਕੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਤਹੇ ਦਿਲ ਸੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ये स्वर है लता मंगेशकर और किशोर कुमार के। फिल्म का नाम है त्रिशूल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार खयाम।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था त्रिशूल। कार्यक्रम का अगला गीत नौशाद साहब का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज और ये फिल्म है साथी।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था साथी। इसी आवाज को सुनिए, फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में ये था हसरत जयपुरी का लिखा गीत, स्वर मोहम्मद रफी का था और फिल्म का नाम था यकीन। लता मंगेशकर की आवाज है फिल्म उलझन के लिए।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था उलझन। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है यादों की बारात। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत राहुल देव बर्मन का है।

इस युगलगान के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ
0: ऐसी।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को

बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितो ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

0: पास हूँ सदा।
1: बासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया।

जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। तुम्हारा

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमति और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया, जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे। आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक

0: संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।
1: मेरा

अनुभव के गीत गुलजार ने रचे और इसका संगीत कनू रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका ये विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे कनू रॉय।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही। हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए, गृह प्रवेश।

आविष्कार और गृह प्रवेश ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

0: वासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। वासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में वासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श। नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच, आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 वासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई

जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो

0: पास जाना है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन छाया गीत के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

मुलाकातों का ये मौसम, तेरी आंखों में डूब जाने का मौसम, रंगों में सिमटी हुई तू जब आती है मेरे सामने, तो कायनात में बिखर जाता है बहारों का मौसम। और जब दिल की वीरानियां तेरे ख्यालों से गुलजार होती हैं, तो बहुत भाता है तेरी यादों का मौसम। मेरे इश्क के तमाम रंगों को ओढ़कर जब तू आती है सामने, तो मेरी नजर का ख्वाब बन जाता है तेरी खूबसूरती का मौसम।

स्याह रातों में, दिन के उजालों में, एक तेरा चेहरा ही नजर आता है सभी नजारों में। हर तरफ यही अफसाने हैं कि हम तेरी अदाओं के दीवाने हैं। कभी काली घटा को ओढ़कर दिन में तू निकलती है, तो कभी झिल मिलाती हुई शब में तू चांदनी सी बिखरती है। वो तेरे पैरहन के अंदाज, वो तेरे हुस्न के जलवे, तेरे कदमों पर सिर झुकाकर चांद भी करता है तेरे सजदे। बेनूर सी है मेरी जिंदगी तेरे बिना, करता हूं मोहब्बत तुझसे मैं बेपनाह।

अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है छाया गीत में। कुछ कहानियां अधूरी सी, चंद मुलाकातें पूरी सी, बड़े हसीन दिन थे वो, खूबसूरत सी थी वो रातें, हाथों में हाथ डाले करते थे हम जब ढेर सारी बातें, चांद का नूर तुम्हारी आंखों में झलकता था, काली घटाएं लहराती थी जुल्फों में, ढलते ढलते शाम कुछ यूं तुमसे लिपट जाती थी, जैसे रात की आगोश में कोई कली सी खिल जाती थी।

अदाएं भी हैं तुझ में, है अंदाज भी सबसे जुदा। हुस्न की मूरत है तू, तू ही है मेरा जहां। कभी बेमौसम बरसात सी तू मेरे वजूद को भिगो जाती है, कभी अनकही किसी बात सी तू मुझे मदहोश कर जाती है। खामोशी की भी जुबां होती है, ये सुना था मैंने, तेरी आंखों को पढ़ा जब इस बात को माना मैंने। तेरे होने से ही है फूलों में खुशबू, तेरे होने से ही है हवा में जादू। तू है जैसे एक हसीन गजल या फिर कोई एक महकता सा कंवल।

एक सुबह हो तुम धुली धुली, एक शाम हो तुम मदहोश सी, एक कतरा हो तुम शबनम का, एक सितारा हो कहकशां के दामन का, एक मुकम्मल हुस्न तुम्हारा परंपरा में सिमटा हुआ सा, कुछ कुछ हया की चांदनी में लिपटा हुआ सा, दिल लुभा रही है तुम्हारी हर एक अदा, इश्क को जैसे दे रही हो सदा, फूलों की खुशबू हो तुम या कोई फूल ही है मेरे रूबरू, चांद की किरण कहूँ या चांद हो तुम हूबहू।

0: 1544 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
7: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
6: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
7: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
6: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
7: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
6: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: गुरदास मान दी आवाज दे विच आओ सुनते हैं अगला गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000

0: से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस वेले रात के 11:05 ते 20 सेकंड होए ने। साडी अज दी सभा खत्म होंदी है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडे नाल फिर मुलाकात होवेगी। तद तक सानू दिओ इजाजत। जय हिंद।